नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 3 अक्टूबर 2026, दिन शनिवार, अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर।

लोग बुराई की तरफ हमेशा उत्साहित हैं, लेकिन सत्य की तरफ आलस वाले आंख चुराने वाले हैं। निंदा बखीली में चाहे सारा दिन बीत जाए, लेकिन सत्संग की चार घड़ियों के लिए इंसान के पास लाख

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
3: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सरगम। सभी दोस्तों को किरनी का नमस्कार। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए हुए गाने के साथ, जिसको म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और फिल्म का नाम है अवतार।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको अपने संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है लोफर और इस गाने को अपनी आवाज दी है आशा भोसले ने।

अब पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर जानवी ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम। आप पेश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, फिल्म बगावत से, और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है खयाम के म्यूजिक दिया हुआ, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है शंकर जयकिशन का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं जलाल मुरादाबादी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है बरसात।

अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी और मुकेश के गाए हुए गाने से, जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिए। नंबर है 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6, पेश किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लल्लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अन्नू, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। आलू व मटर की अगेती फसल के लिए अभी तैयार करें खेत, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करें बिजाई, बिजाई से पहले बीजो उपचार करें, जमाव अच्छा होगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में आलू और हरी मटर की अगेती बिजाई के लिए खेत तैयार कर लेना चाहिए। इस दौरान दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिजाई शुरू कर दें। हरियाणा में आलू की खेती मुख्य रूप से उत्तर और मध्य हरियाणा के जिलों में होती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार, सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत बीजों का चयन कर किसान सामान्य फसल से 20 से 25 दिन पहले पैदावार ले सकते हैं। मंडियों में शुरुआत में पहुंचने वाली उपज का भाव सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ऊंचा मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होता है। खेत की तैयारी और भूमि उपचार। बलुई दोमट मिट्टी अगेती आलू और मटर दोनों के लिए सबसे अच्छी होती है। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं। अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरडी मिलाकर मिट्टी में बिखेरें। इससे उकठा और जड़ गलने जैसी फफूंद जनित बीमारियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। अगेता आलू 70 से 80 दिन में तैयार। उन्नत किस्में कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्य और कुफरी खेयाती, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी मोहन, कुफरी पुष्कर अगेती फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ये किस्में 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। बीज चयन और उपचार। केवल 30 से 40 ग्राम वाले अंकुरित कंधों का ही चयन करें। बिजाई से पूर्व कंधों को 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बनडाइजिम प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर छाया में सुखाएं। मेड और कतार की आपसी दूरी। आलू को हमेशा मेड पर लगाएं। मेड की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। कंद को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में दबाएं। अगेती मटर 35 से 40 किलोग्राम बीज डालें। उन्नत किस्में पूसा प्रगति, काशी मुक्ति, आजाद P3 और GS10 प्रमुख किस्में हैं, जो 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। बीजोपचार प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। पहले TM या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर का लेप लगाएं। इससे पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता 20% तक बढ़ती है। बिजाई का तरीका, मटर को 30 सेंटीमीटर की कतारों में बोएं और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना दबाएं। ये सावधानियां बरतें। आलू की बिजाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। डोरियों का 1/3 भाग पानी में डूबा होना चाहिए। खेत में पानी जमा ना हो, जल भराव से बीज गलने का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। हरी मटर की बिजाई हमेशा जब जमीन में उचित मात्रा में नमी हो तब करनी चाहिए। उसके पश्चात पौधों पर हरी मटर के फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पहली सिंचाई करनी चाहिए। गन्ने की फसल के साथ गोभी, धनिया और मेथी की बिजाई करें, बढ़ेगा मुनाफा। मध्य सितंबर के बाद शरदकालीन बिजाई का सही समय। गन्ने की शरदकालीन बिजाई के लिए मध्य सितंबर के बाद का समय सही है। गन्ने की बुआई पंक्तियों से पंक्ति के बीच 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर उपयुक्त अंतर फसलों जैसे लहसुन, फूलगोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, धनिया, मेथी, अन्य सब्जियों के साथ बैंड पर की जा सकती हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज ने कहा कि
जिन किसानों ने गन्ने के साथ अंतर फसलें लगानी है, कम अवधि खड़ी और गैर फैलने वाली किस्मों को लगाना, दोनों फसलों की अनुशंसित खुराक को लागू करना, खरपतवार नियंत्रण के लिए दोनों फसलों के लिए सुरक्षित शाकनाशी का चयन करें, गन्ने का बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करने के लिए बेड पर अंतर फसलों की बुआई के 5 से 7 दिन बाद खड्डों में हल्की सिंचाई करें। सोका रोग प्रबंधन के लिए फसल चक्र अपनाएं। HAU के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर महासिंह ने बताया कि सोका रोग के प्रबंधन के लिए 3 साल का फसल चक्र अपनाएं व स्वस्थ बीज का प्रयोग करें। तराई भेदक, जड़ भेदक व चोटी भेदक का जैविक नियंत्रण बहुत प्रभावी है। 1 एकड़ के लिए 1 ट्राइकोगार्ड प्रयोग करें, जिसे 24 टुकड़ों में काटकर खेत में छोटी छोटी दूरी पर अगोलों में डांके। अष्टपदी रेड माइट से बचने के लिए 600 मिलीलीटर रोगोर 30 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। फसल से खरपतवार हटाएं। बारिश के बाद यूरिया डालें। गन्ने की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। पछेती बिजाई में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी ठीक से चढ़ाएं और सितंबर तक दूसरी बंधाई आवश्यक कर लें। बारिश हो तो जल निकासी के बाद 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 2.5% यूरिया का छिड़काव करें। लाल सड़न रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ दें। CO0-238 किस्म लाल सड़न रोग के प्रति अति संवेदनशील है। इस बीमारी से ग्रसित पौधों को उखाड़ करके खेत से बाहर नष्ट कर दें व लाल सड़न रोग से ग्रसित खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें। पोका बोइंग रोग से पत्तियां पड़ जाती हैं पीली। पोका बोइंग रोग में पत्तियां हल्की पीली पड़ जाती हैं एवं उसमें धारियां बन जाती हैं और बाद में पत्तियां सिकुड़ व मुड़ जाती हैं। खेतों में पोका बोइंग रोग के लक्षण नजर आने पर कार्बेंडाइजिम 0.2% या प्रोपिकोनाजोल 0.1% की दर से स्प्रे करें। इसके अलावा गन्ने में सम्मट रोग के लक्षण, जिसमें चाबुक समान संरचना बन जाती है, दिखाई देने पर काटकर नष्ट कर दें, अन्यथा इसमें उपस्थित जीवाणु उड़कर अन्य पौधों को भी संक्रमित कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन की नौकरी छोड़कर अपनाई जैविक खेती। 3.5 एकड़ में 6 फसलें उगा रहे 32 गांव में किसानों को जागरूक किया। बिना रासायनिक खाद धान, गेहूं, सरसों, चना, बाजरा व सब्जी लगाई। कभी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 1500 रुपए महीना वेतन पर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने वाले बंसीलाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चिड़ी गांव निवासी बंसीलाल ने नौकरी छोड़कर खेती करने की ठानी। अब वह 3.5 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। बंसीलाल ने जैविक खेती के लिए 2013 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जाकर 15 दिन की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन पर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। शुरुआती दिनों में लोगों ने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। बंसीलाल के पक्के इरादे रंग लाए। वह अपनी 3.5 एकड़ जमीन में बिना किसी केमिकल के धान, गेहूं, सरसों, चना, बाजरा और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। बंसीलाल बताते हैं कि लोगों को जहर युक्त भोजन से बचाना ही जीवन का असली मकसद है। उनका मानना है कि आज बढ़ती गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारी थाली में मौजूद रासायनिक अवशेष है। जब किसान अपनी मिट्टी को बचाएगा, तभी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। गोष्ठियों में फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। बंसीलाल ने अन्य किसानों को भी जहर युक्त खेती के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। वह अब तक आसपास के 32 गांव में किसान गोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं। इन गोष्ठियों के जरिए वे किसानों को जैविक खाद तैयार करने,
फसल चक्र अपनाने और पेस्टिसाइड खेती करना सिखा रहे हैं। उनकी इस पहल से प्रभावित होकर कई स्थानीय किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती का मार्ग अपना रहे हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सारे नु मेरी राम राम। थम सुन रहे रेडियो वितस्ता आम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पा। मैं हूँ थारे साथ थारी रेडियो सखी नेहा दक्कड़। आज का मारा कार्यक्रम मारी संस्कृति, और आज हम बात करांगे मारी संस्कृति के बारे में। बिजोन सी मारी लोक कला है वे कितनी रहेगी और कितनी खोगी। लोक कला मा सुहांग जो बहुत ही सदियों पुरानी परंपरा है, इसमें कलाकार सुहांग करका लोका का मनोरंजन कराते और अच्छाई का संदेश देते। हरियाणा मा तो ये सुहांग आज के टाइम में भी करे जा रहे। जो कलाकारों वे गांव गांव में जाकर अपनी कला ते लोगों का मनोरंजन करा, पर कहीं ना कहीं मारी यह परंपरा खत्म होन दी जा रही। जब संचार का साधन नहीं हो कराता तो इन्हीं के जरिए खबर दी जा कराती। आज हम एक ऐसे ही स्वांग कलाकार के पास पहुंचे हैं जिनका नाम है सोनू कुमार, और इनकी उम्र हो रही 24 साल, और ये अपनी कलाकारी ते अलग अलग किरदार की भूमिका निभावा और अलग अलग गाँव में जहाँ। राम राम कलाकार जी।
1: राम राम भाई सारियाने। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं जिला जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जाति राजभाट ब्रुपिया कलाकार का स्वांग दिखाता हूँ।
0: तो सोनू कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, बिजोन से स्वांग है वे कत्ते कर दे रहे हैं आप?
1: यो जो स्वांग है जो राजा महाराजाओं के टाइम से चली हुई आई प्रथा है यो। तो इसमें जो राजा महाराजा हुआ करते थे राजस्थान में रजवाड़े, उनके रानियों का उनके न्याणे बच्चों का मनोरंजन किया करते थे हमारे पूर्वज। तो बदले में वो हमें खानू देते थे। राजा महाराजाओं के टाइम से चले हुए आ रही है यो।
0: और आप कहाँ से आए हैं और इस काम ने करने का क्या मकसद है? अभी आप इसने क्यों कर रहे हैं स्वांग?
1: मैं राजस्थान के खाटू श्याम जी के पास का हूँ, और इसने करने का मकसद यही है कि आज के टाइम में जो हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है फोन के जरिए टेलीविजन के जरिए, तो इसने बचाने वास्ते कि भाई आजकल की नई जनरेशन ने यो पता होना चाहिए कि भाई ब्रुपिया कलाकार क्या था और वो अपना किस तरह वो काम किया करता था, क्या क्या भूमिकाएं निभाया करता था।
0: ठीक बात। हाँ, जिस तरह आज के टाइम में हमारी पुरानी परंपरा तो खोई गई, लेकिन फिर भी थम प्रदर्शन करका लोग का सुनावा, क्या आपकी बात लोग ध्यान ते सुना और क्या आप देखा लोग?
1: जी बिल्कुल, अभी भी जो पुराने बंदे हैं वो तो आज भी इस कला का इज्जत करते हैं, भावना रखते हैं चीजों में। जो नई जनरेशन है वो समझने में अभी टाइम लगेगा उनको। बाकी यो है कि नई जनरेशन के लिए ही हम यो प्रोग्राम दिखाते हैं कि भाई नई जनरेशन भी इससे कुछ सीखे और इस कला नु समझे। बाकी पुराने जमाने वाले बंदे तो आज भी जान रहे इस कला के बारे में कि वो कला क्या थी और क्या है, इस करके आज भी वो प्रोग्राम दिखाते गाँव गाँव में।
0: तो आप लोगों नु इस स्वांग के जरिए किस तरह शिक्षित करा है यो भी थोड़ा सा हमारे श्रोता नु बताओ।
1: जी बिल्कुल, यो जब भगवानों के जो गेटअप थे, जैसे शंकर भगवान हो गए, नारद मुनि हो गए, परशुराम हो गए, तो जितने भी भगवानों के प्रोग्राम थे, श्री कृष्ण भगवान हो गए, तो इनकी छवि हमने अपने ऊपर उतारी पहले कि भाई ये इस प्रकार के दिखते थे। इससे पहले लोगों अलग अलग अपनी भावना रखते थे भगवान के प्रति, पर एक ब्रुपिया कलाकार अपने शरीर पर 52 रूप धर के और अलग अलग भगवानों की छवियां दिखा के यो प्रस्तुत किया करता था कि भगवान ऐसे दिखते थे यार, यो उनकी बोलबाणी थी। तो एक ब्रुपिया कलाकार अपने शरीर पर 52 रूप धरता है, यो परंपरा है।
0: ठीक बात। और आप जिस तरह ये सुवांग करा, कहाँ कहाँ आप ये सुवांग कर कह रहे हैं, मतलब कितने जगह जाए आप?
1: जी और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, गुजरात, ये 8-9 राज्य हैं जहां इस कला को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आज की नई जनरेशन के लिए जैसे बागड़ो, जिन, याकू, भील, जो बच्चे जिसमें भावना रखते हो या बच्चे जिस कला से खुश होते हो उस कला को दिखाने लग गए।
0: और आपने आज तक कितने गोमा यहाँ पे जा लिए, जिस तरह आप इस गो मैरे, और कितने गो आपने कर दिए हैं?
1: जी मैं अपने नारायणगढ़, यमुनानगर और अम्बाड़ा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनमें सारों में जाता हूँ मैं और अपनी कला प्रदर्शित करता हूँ।
0: ठीक बात। और जिस तरह आप अपना ये प्रोग्राम दिखावा तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुआ है, लोग क्या कहा आपने देख कर जब आप इस वांग करा?
1: जो बंदे है नई जनरेशन के, कोई इस कला को समझने वाला होता है, कोई समझता भी नहीं है कि ये क्या है, क्या है, क्यों घूम रहा है, तो तो कई फालतू बात करने वाले भी हैं, तो कई इस कला की इज्जत करने वाले भी हैं, कदर करने वाले भी हैं, तो इस कला को समझते भी हैं, जो पुराने बंदे हैं या जो समझने वाले हैं इस कला को वो अच्छी भावना रखते हैं। बाकी जो कोई नहीं समझता है वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाते रहता है।
0: ठीक बात। और आप यो स्वांग कब तक करांगे और क्या इच्छा है भी यो कब तक चलता रहेगा स्वांग? जिस तरह आप 24 साल के हो गए तो कितनी उम्र तक करना चाहेंगे भी, हाँ मैं कब तक करता रहूंगा यो काम?
1: बस यो ही है कि सारे ते यही अपील है कि भाई इस चीज को समझो, इस कला को समझो, जो आगे तक हम दिखाते रहे। आने वाला जमाना ऐसा नहीं रहा कि गांव गांव में हर प्रकार का बंदा नहीं जा सकता, तो इस चीज को थम समझोगे जब हम आते रहेंगे तो समझने वाले थम रह गए हो जनता माता, जो थम समझोगे तो हम आवेंगे, और जब थम थारे प्रति इस चीज की कदर हट जाएगी या थम समझना बंद कर दोगे तो हम भी मारा दाड़ी मजदूरी करके हमारी कला को भूल जाएंगे, या आने वाली जनरेशन यो याद भी नहीं रखेगी कि ब्रुकिया कलाकार कौन था, तो इस चीज ने बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हो जब तक हम समझ रहे हो इस चीज ने, जब तक तारे कला के प्रति प्रेम है जब तक दिखा रहे, जिस टाइम पे तारे वो कला के प्रति प्रेम हट जाएगा उस टाइम पे बंद हो जाएगी।
0: ठीक बात। तो जिस तरह आप ये किरदार निभावा तो कोई किरदार मारे श्रोता नु बोल कभी भी दिखावांगे भी मैं इस तरह बोलू हूँ, कोई किरदार बोल कर भी बतावांगे श्रोता नु?
1: जी बिल्कुल, श्रोता ने किरदार बोल के भी दिखावांगे और बन के भी दिखावांगे। जैसे भील का प्रोग्राम हो गया तो भील की बोली ये होती है कि वो आदिवासी जंगलों में रहता था भील, तो भील बोलता था कि भील भगत भगवान का प्यारा रहता है तान और मान से रोक के छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। जैसे बागड़ों का हो गया, बागड़ों जिस टाइम पे अपना वो लोहे का सामान बनाते थे बागड़, जैसे चिमटा फूकनी वगैरह ये जो भी है कि लो चिमटा फूकनी झरना पलटा नागोरी नक चुट्टी, कोई भैंस की साकड़ बनवा लियो, कोई कनस्तर का ढक लगवा लियो, तो ऐसे करके अपने सामानों का विस्तार किया करते थे कि मैं ऐसे ऐसे सामान बनाती हूँ और ऐसे ऐसे मैं बेचती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, जो उनसे आपने बागड़ों का बताया तो बहुत ही बढ़िया लग्या। और इससे अलग भी कोई किरदार जो हमारे श्रोता आप सुना सका अपनी आवाज के जरिए तो आप भी सुना दो
1: जी। जैसे शंकर भगवान का हो गया कि जैसे बम लहरी जटा बिच गंग बहरी, ये शंकर भगवान का प्रोग्राम होता है। जैसे नारद मुनि का प्रोग्राम होता है नारायण नारायण सटक नारायण गटक नारायण, नारद आये भाव से मांगे तीन रतन बहता पानी निर्मला भात बतीला होए, नारद जी तो रमते भले दाग लगे ना कोई। जैसे श्री कृष्ण भगवान का हो गया कि वारे काना नंद का के जन्म चरावे ढोर, रीत की प्रीत जानी नहीं तो खागो मक्खन चोर। ये श्री कृष्ण भगवान जी के बोल थे, जो कृष्ण भगवान मक्खन चोर के खाया करते थे वृंदावन में, जब श्री कृष्ण भगवान गाय चराया करते थे कि आज श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजेगी और वहीं पर गाय चरेंगी वृंदावन में, ये कृष्ण भगवान की हो गई। ऐसे करके जितने भी किरदार होते हैं उन्हें पहले ब्रूपिया अपने शरीर में उतार लेता है कि मैं गट में रमा लेता है उस चीजों को कि मैं कैसे तो इस प्रोग्राम को दिखाऊं और कौन सी मेरे से भूल हो जाए या चूक हो जाए तो उसको मैं सुधारूं, तो सब चीजों को सुधार के ब्रूपिया कलाकार अपने शरीर के ऊपर वो स्वांग करता है, जो भी कोई कसर रह जाती है उसको पूरी करके और वो कला बनाई जाती है।
0: बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया जानकारी दे दी। और जिस तरह आपने बताया है भी रूपिया हो 52 रूप हो इसके, अरे अपने 52 रूपों ते ही लोगों का मनोरंजन भी करा और उन्होंने संदेश भी दे, तो आज के टाइम में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रेडियो के माध्यम से? बीमारी परंपरा या खत्म नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजस्थान के 3-4 जिलों में ये जो हमारे बाट समाज है जो फैली हुई है, ये सिर्फ 3-4 जिलों में ही रहके समिट गई, बाकी इस कला को प्रदर्शित करने वाला और कोई राज्य नहीं है और कोई जाति नहीं है, एक ये ब्रूपिया कलाकार राजस्थान के जो 3-4 जिलों में रह गए हैं, तो वो 700 से 800 बंदे हैं जो इस कला को प्रदर्शित करते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो इनकी इज्जत करो, इनकी कला को सम्मान दो ताकि आगे आगे अपने कला को प्रदर्शित करें, मनोरंजन करें थारे न्याणे बच्चों का और इस कला का

0: तो थारे से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे तुम इस चीज की कदर करो, कला का सम्मान करो इसका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सुवांग कलाकार का, बहुत जिसने हमारे श्रोता ते इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहो FM रेडियो 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर मारी संस्कृति। हम सुन रहे थे मारा कार्यक्रम मारी संस्कृति, और हम अगला कार्यक्रम लेकर फिर थारे ते रूबरू होंगे। तब तक सुनते रहो रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। जे थारे पास भी कोई जानकारी है तो थम मारे स्टूडियो नंबर पर फोन या मैसेज करके मनु बता सका। मारा नंबर आ 705641301 705641301 जय हिंद, जय भारत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

मनु यो डरा, पर मनु यो डरा भी मनु जोन से ये सकारी है ने नहीं छोड़ने के, और जय एक बार मैं मर गया फिर कुछ भी नहीं देख पाने का। कहा अच्छा, तो जदू उसने अपनी आप बीती सुनावा उसने उस पर बहुत तरस आ जा। कह रहा अच्छा जी यह बात आ। तो फिर वह कहा थोड़ी देर सोच का, बनाने नू मैं तन्नू इंसान भी बना दियू और इंसान ते कुछ और भी बना दियू, पर उस चीज का क्या फायदा जोन सा तेरे अंदर डर आ वह डर नहीं खत्म होने का। जोन सा तेरा दिल आ ना वह दिल तेरा चूहे का, चाहे तो शेर बन जा, चाहे तो घोड़ा बन जा, चाहे तो इंसान बन जा, पर तेरा दिल चूहे का ही रहेगा और तेरा डर खत्म नहीं होने का। उस चूहे नू भई ये बात, हाँ बात तो भई सही कह रहा, उसनु बात समझ में आ जा। तो बस फिर कहा भी तन्ने इब तक मनु इतना कुछ तो बनाया, इब मैं तन्नू आज जोड़ का कह रहा इब तो मनु दुबारे ते वही चूहा बना दे। तो उसनु वही चूहा बना दे। तो उस चूहे नू जब बात समझ में आ जा तो वह अपना बिना डरते अपनी अच्छी जिंदगी एन बीतन बताने लग जा, अपनी बढ़िया जिंदगी बताने लग जा। तो यही बात मारी इंसाना किया भी जोन सा मारा अंदर का डर आ, जिस तरह मेहनत करा तो मन डर हो अभी पता नहीं भाई कामयाब हो आगे अक नहीं होने के, मन अपना डर खत्म करना। इब जोन सा कामयाब बंदा उसमें भी डर हुआ, जोन सा कामयाबी की बाट मा उसके अंदर भी डर हुआ, तो मन अपना डर खत्म करना। डर अमीर मा भी हुआ, गरीब मा भी हुआ, इंसान मा भी हुआ और जानवर मा भी हुआ, अपने अंदर के डर नु खत्म करना। डर एक विचार आ और विचार नु कदी भी बदल सका, तो इस कर का मन कदी भी कोई काम करना डर तो लगा ही भी मेहनत कर रहे इसमें पता नहीं हम कामयाब होंगे कि नहीं, सबसे पहला अपने अंदर के डर नु खत्म करना। तो इस कहानी ते मन यही शिक्षा मिला भी अपने डर नु खत्म करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

कैसी लगी। और जे थारे पास भी कोई अपनी लिखी हुई कहानी है तो थम मनु भेज सका। अगर वह कहानी मनु अच्छी लगी तो हम उसनु अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचावांगे। मारा व्हाट्सएप नंबर आ 7056413010 7056413010। जय हिंद, जय भारत।

अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

कुछ लम्हे होते हैं जो बस दिल में बस जाते हैं, कुछ बातें होती है जो हर रोज की भागदौड़ से भी याद रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। यहां हर कहानी में होगी एक गहराई, हर शब्द में होगा एक एहसास और हर पल में एक अपनापन। तो आइए दिल से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर साथ साथ। शादी कब, स्वयं निर्णय ले। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ शिक्षा, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिक मूल्य माना जाता है। इसके बावजूद कार्यस्थलों और समाज में अव्यवाहित पुरुषों व महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशील रवैया अपनाया जाता है, वह न केवल उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अपेक्षाएं हैं और दबाव भी। शादी को आज भी सामाजिक पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही युवक युवती नौकरी करना शुरू करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। अब तो अच्छी नौकरी मिल गई है, शादी कब कर रहे हो? यदि कोई अव्यवहित रह जाए तो उसके चरित्र, पसंद और निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। महिलाओं के मामले में ये टिप्पणियाँ और भी अधिक तीखी होती है। अब उम्र हो गई है, जल्दी करो, ये बातें व्यक्ति को अपूर्ण महसूस कराने के साथ साथ उसकी आत्मग्लानी का भी कारण बन जाता है। मजाक में व्यंग्य होता है। कार्यस्थलों पर अव्यवाहित सहकर्मियों के साथ भी कई बार हल्के फुल्के मजाक के नाम पर गहरे व्यंग्य किए जाते हैं। अब तक सिंगल हो, कोई मिला नहीं, ये टिप्पणियां सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक असर गंभीर होता है। इससे व्यक्ति अलग थलग और हीन भावना से ग्रसित हो सकता है। अविवाहित महिलाओं को लेकर विशेष पक्षपात होते हैं, उन्हें करियर में ज्यादा महत्वाकांक्षी कहा जाता है। शादी को उपलब्धि मानते हैं। जो व्यक्ति शादी कर लेता है वो खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरों को सलाह देने लगता है, अब तुम्हें भी कर लेनी चाहिए, जिम्मेदारी बनना और शादी जरूरी है। ये दृष्टिकोण न केवल बचकाना है बल्कि असंवेदनशील भी है। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है, कोई प्रतियोगिता नहीं। चुप ना रहे, सामना करना सीखिए। संवेदनशील संवाद अपनाए। सहकर्मियों से बातचीत करते समय व्यक्तिगत विषयों को नजरअंदाज करना सीखे। आपको क्या करना चाहिए ये आपका निर्णय है, ना किसी दूसरे का। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तानों और असंवेदनशील टिप्पणियों को अनसुना करें, क्योंकि ये मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। दूसरों की बातों का तनाव ना ले। आत्मविश्वास बनाए रखें। शादी आपकी पहचान या सफलता का पैमाना नहीं है, आपके पेशेवर कौशल, सिद्धियों और जीवन शैली को सम्मान दे। खुद को ये याद दिलाते रहे, मेरी कीमत मेरी वैवाहिक स्थिति से नहीं, मेरे चरित्र और योगदान से तय होती है। सीमाएं तय करें। यदि कोई बार बार आपकी शादी को लेकर टिप्पणी करता है तो मुस्कुराते हुए लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहे कि ये विषय मेरे लिए निजी है, मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। विनम्र लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया से लोग अक्सर दोबारा वो बात कहने से बचते हैं। हास्य का सहारा ले। यदि आपको मजाक के रूप में ताना सुनना पड़े तो हल्के फुल्के हास्य से बात को मोड़ सकते हैं। अभी तो करियर से शादी की है, दूसरा रिश्ता बाद में सोचूंगा या सोचूंगी। दोस्तों, वक्त का पंख तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी उड़ जाता है। देखते ही देखते हमारे इस खूबसूरत सफर का आज का पड़ाव आ गया। याद रखिए, जिंदगी छोटी है लेकिन अगर इसे मुस्कान और उम्मीद के साथ जिया जाए तो हर पल अमर हो जाता है। तो मिलेंगे हम फिर एक नए दिन, नई बातों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।

دوستو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں رمیش مراٹھا، نمستے۔

மாறு. शहरों में खिले लुक्का छुपी फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंड का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है। आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर से बीते दिनों की यादों को

तन्हा गुजरे दौर की यादों के साथ। जब भी चले सिर्फ अकेले चले इन अनजान रास्तों पे, जो कभी अपने थे भी वो भीड़ में गुम हो गए, खो गए इन बदलते मौसमों के साथ। पर इसके बावजूद जब जब दिल धड़कता है तुम्हें याद करते हैं।

मुस्कुराहट ही हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहाँ लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात इतनी सी है,

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ, रूह में उतर जाती हो, ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो। इन हवाओं में मुस्कुराती हो, इन फिजाओं में गुनगुनाती हो। जब जब भी तेरा जिक्र होता है मैं महकता हूं।

सिर्फ तुम्हारी परछाई है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूं, बिठाता हूं अपने पास, संवारता हूं, सजाता हूं, बातें करता हूं। गर्ज इश्क था तुम्हारा वजूद, पर फिर भी तुम हमारे न हो सके, और तमाम सफर परछाइयों के साथ ही गुजर गया। ये जमीन चुप, आसमान चुप, मैं चुप,

आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। यहां हर तरफ गूंजती है सदाएं इश्क की, और तुम्हारी आंखों में झील जैसी खामोशी और बदलते मौसम की झलक दिखाई देती है। यहां हमारे संग संग बादल तैरते हैं, और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

पेश है मिले जुले गीतों का ये खास कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। आदाब।

छूता हूँ, खुशबू को ढूंढता हूँ, पानी को पकड़ता हूँ, रूहों से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। टिमटिमाते सितारों की करवटों में शबनमी बूंदों की रंगोली से इंद्रधनुषी बंटवारे की लकीरें खींच लेता हूँ। आसमां से नजरें मिलाता हूँ, चांद को निहारता हूँ, सुनसान राहों को तन्हा रातों में तकता रहता हूँ। चांदनी रातों में अपने ही साए से लिपट जाता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हूँ। गुप अंधेरों में खुद के साथ सफर करता हूँ, भटके परिंदों की रहनुमाई करता हूँ।

मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, इंद्रधनुषी मौसमी बारिश हो, जिंदगियों में बहारों की बौछार हो, समय को ठहरने की इजाजत हो, चाहतों में चुंबक जैसी जुम्बिश हो। सांसों की गर्माहट में होंठों की कपकपाहट हो, इन कदमों की आहटों में पुनर्जन्म का एहसास हो, आशियानों में लगी आग हो, टूटे आईनों में बिखरती तस्वीरें हों, लेकिन सिर्फ तुम मेरे ख्वाबों में हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर।

मौसम बदलते रहे पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबां है,

फैलाती है मन का आंचल, भर देती है खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती है, गगन के उस पार अपनी मुस्कुराती दुनिया में, जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करती है और जिस्म प्यार का इजहार।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आदाब।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। हमारे आज के मेहमान हैं मिस जोबन रूप छिन्ना जी। प्रस्तुत करेंगे आरजे सेजल।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। ते कार्यक्रम शुरू हो चुकिया है काव्य गोष्ठी भाग 7 आरजे सेजल दे नाल। ते अज फेर शायरी दा समा बनांगे पंजाबी विच। ते ए समा बनन लई साडे नाल मौजूद ने साडे अज दे मेहमान जोबन रूप छिन्ना जी, जो पेशे तो एक टीचर ने ते अपने फ्री टाइम विच लिखदे वी ने। हुण तक काफ़ी अवार्ड्स जिवें यंग राइटर अवार्ड प्राप्त कर चुके ने ते काफ़ी पंजाबी कवि दरबारां विच भी अपनी हाजिरी दे चुके ने। अज साडे नाल ओ जुड़े ने अंबरसर तो। ते जोबन जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दे कार्यक्रम विच।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा जोबन जी, ए ते जिहड़ा परिचय मैं जानदी सी तुहाडे बारे ओ मैं दित्ता, ते अपने शब्दां विच मैं तुहाडे बारे श्रोतावां नूं दस्या। ते हुण ओ चीज मैं जानना चाहवांगी जो साडे कोलो रह गई हो या तुसी एक्स्ट्रा दसना चाहो किसी कविता राही या अपने शब्दां राही।
3: जी वैसे तो तुसी मेरे बारे दस ही चुके हो, ऐसे पेशे तो मैं टीचिंग दी जॉब कर रही हां।
2: जी जी।
3: एमए पंजाबी कीती हुई है मैं। पहला उस तो मैं मेडिकल फील्ड च स्टडी कीती सी, जिवें BSc मेडिकल कीती। उस तो बाद जिवें मेरा लिटरेचर च काफी इंटरेस्ट सीगा
2: जी,
3: ते उस तो ओ ही सोच के मैं एमए पंजाबी नू करना चाहिया। ते ओ मेरा एक मकसद ए भी सी कि मैं जिहड़ा लिटरेचर सीगा उन्हां नू भी गहराई तो समझना चाहुंदी सी, क्योंकि जिवें लिटरेचर नाल जुड़ी तो हुई सी पर मैनू नहीं पता हुंदा सी कि केड़ी चीज पढ़ा, केड़ी ना पढ़ा, केड़ी पहला पढ़ा, है ना, जिदे नाल मेरी जिहड़ी लिखत है वो सुधर सके, उहदे च सुधार आ सके, किवें करां। ते इस तरीके दे नाल जदों मैं काफी सारे राइटर्स दे नाल जुड़ी हां ते उन्हां ने भी मैनू राय दित्ती सी कि तुसी MA पंजाबी जरूर करियो, क्योंकि जदों आपां इक सिलेबस नू पढ़दे हां ते उहदे विचों ही सानू होर भी चीजां दा पता लगदा।
2: जी जी, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
3: ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ।
2: ਜੀ ਜੀ,
3: ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 8th class ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, हाँ जी शाबाशी मिले तो वो फिर बच्चा होर लिखन दी कोशिश करता है, होर पढ़न दी कोशिश करता है।
2: जी
3: फिर मैं उस टाइम जेड़े स्कूल दी लाइब्रेरी च जिन्नियां भी बुक्स सीगियां पंजाबी दे काव्य दे रिलेटेड, फिर मैं सारियां पढ़नियां शुरू कीतियां। इस तरीके दे नाल हौली हौली फिर मेरी कविता विच भी सुधार आउंदा गया।
2: जी, कितने ना कितने टीचर्स भी बहुत वड्डा रोल प्ले करते हैं एक बच्चे नू कितने ना कितने अपनी लाइफ च करियर विच स्टैंड करन वास्ते।
3: जी
2: ते
3: जी
2: सफ़र बारे तो तुसी दस्ता, होर भी गल्लां करांगे सफ़र तो जुड़ियां, लेकिन शो दा नाम काव्य गोष्ठी है। ते सब
3: जी
2: तो पहला असी शुरुआत कर लैने शो दी एक कविता नाल। ते जे
3: जी
2: तुहानू अपनी पहली लिखी हुई कविता याद होए तुसी शेयर करना चाहो ओ, या कोई भी तुहाडी पसंदीदा कविता तुसी साडे श्रोतावां नू सुनाना चाहो ते तुसी सुना सकदे हो।
3: जी जिहड़ी पहली कविता लिखी सी ओह ते चलो बचपन च लिखी सी ते
2: जी
3: ओहदी
2: जी
3: गहराई भी इन्नी नहीं सी, पर मैं थोड़ा जिहा पहरा याद आउंदा, मैं ओह कोशिश करांगी। ओह लिखी सी कि भारत मेरा देश है प्यारा, वारे वारे जावां मैं इस तों, लगदा बड़ा प्यारा ते न्यारा, ये गुरुआं पीरां दा पारस, ये ऋषियां मुनियां दा पारस, ये फुल्लां दी खुशबू तों न्यारा, वारे वारे जावां मैं इस तों, लगदा बड़ा प्यारा ते न्यारा। जिवें बचपन से ते ख्याल ही ओने कसी लिखन ली।
2: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी कविता सी। वैसे बचपन च भी लिखी, लेकिन तुसी लिखी बहुत खूब। ते
3: शुक्रिया
2: अगे वधदे हां, पिछले प्रश्न
3: जी
2: नाल ही जुड़िया एक सवाल होर पूछना चाहवांगी कि तुसी
3: जी
2: लिखते तां बहुत सोहना हो, ते
3: जी
2: तुसी टीचिंग दा प्रोफेशन ही क्यों चुनिया? तुसी एज अ राइटर भी अपना प्रोफेशन चुन सकदे सी, ते इस प्रोफेशन विच ही क्यों आना तुहानू लग्गिया ठीक?
3: हाँ जी, ये सहज सुभा ही जो तो मैं एमए पंजाबी की है, उस तो बाद मैं सर्च आउट किया कि केड़ी जॉब करा,
2: जी जी
3: ते इधर स्कूल्स दे विच रिज्यूम दिते सीगे, ते ओदे नाल ही मतलब कि फिर मैंने जॉब मिल गई। हुण वधिया लगता है कि बच्चों के नाल रहना, उन्हां दी साइकोलॉजी नूं समझना, फिर खुद मतलब कि अपनी लाइफ जिहड़ी असीं स्कूल दे विच बिताई है उस लाइफ नूं फिर मतलब कि इंजॉय करना अच्छा
2: जी
3: लगता है कि बच्चों के नाल, क्योंकि अजकल के बच्चे भी बहुत उन्होंने अंदर भी क्रिएटिविटी है,
2: बहुत
3: जो
2: ज्यादा।
3: असी हाँ जी जो असी अपना कुछ उन्होंने नाल शेयर करते हैं तो उन्होंने अंदर जो क्रिएटिविटी होंगी है उन्होंने तो भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पुट करते हैं, जिन्हों के नाल मैनू लगता है कि मैं उन्होंने नहीं सगो मैं भी उन्होंने को बहुत कुछ
2: जी,
3: सीखती हूँ।
2: ते तुसी स्कूल विच भी बच्चियां नू कविता कदे सुनांदे हो, या बच्चे कहंदे ने मैम नू कविता सुनाण वास्ते, या तुसी एक स्ट्रिक्ट टीचर दे रूप विच उत्थे रहंदे हो?
3: नहीं स्ट्रिक्ट तो नहीं रहिंदी, बट ये है कि मैं उन्होंने ये नहीं दसा होया कि मैं कविता भी लिखदी हाँ,
2: जी
3: उस तरीके दे नाल मतलब कि उन्होंने ये नहीं पता, पर वैसे मैं उन्होंने जिस तरीके दे नाल कविताएं पढ़दी हाँ, जो कोई उन्होंने सिलेबस च कविता होंगी है वो जरूर मैं अपने अंदाज च सुनाउनी हाँ जेड़ी उन्होंने वधिया लगदी।
2: हाँ, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने टीचर नाल उदो ही अट्रैक्ट होंदे ने जदों टीचर कोई लिटरेचर या कोई कहानी अब सानू
3: जी जी
2: सुनांदे है ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके नाल, ते सानू भी बहुत वधिया लगदा सुन के ओह चीज़ां। ते
3: हाँ
2: नाले
3: जी
2: तुसी कहा कि मैं बचपन विच काफी बुक्स पढ़दी हुंदी सी, ते
3: जी
2: केड़ी ओह बुक रही है बचपन विच जेड़ी तुहानू हजे तक याद है पढ़ी हुई हो एक कोई बुक?
3: हाँ जी, मैं बचपन दे विच ते पहला सब तो पहला जिहड़ी मैं कहां कि बहुत इंटरेस्टिंग लाइक इंटरेस्ट लैके पढ़ी सी ओ सीगी अल्फ लैला दियां कहानियां, ओ मैनू अज भी बहुत पसंद ने, ओ मैं ओ बहुत इंटरेस्टिंग नाल ओ पढ़दी हुंदी सी। उस तो बाद जिहड़ियां मैं काव्य दियां किताबां पढ़ियां ने
2: जी
3: ओ मैं सुरजीत पात्र दियां जी दियां पढ़ चुकी सी, उदों शिव कुमार बटालवी जी दियां पढ़ियां हुंदियां सी उत्थे ओ पढ़ियां है, भाई वीर सिंह जी दियां किताबां सी ओ पढ़ियां, इस तरीके नाल जिहड़ियां जिहड़े मटीरियल मैनूं उत्थे मिलदे सी अवेलेबल सी लाइब्रेरी च ओ फिर मैं उत्थे पढ़े है।
2: बहुत खूब, क्योंकि शिव कुमार बटालवी जी हो गए, उन्हां दी कवितावां बहुत ही प्रचलित ने, ते हुण भी असीं
3: जी
2: काफ़ी उन्हां दी कवितावां सुनदे हाँ। ते राइटिंग दी गल करिए, ते राइटिंग विच तुसी केड़ा जैनर लिखना पसंद करदे हो, फेवरेट जैनर जे मैं पुछना चाहवां तुहाडा?
3: जी ये तो मतलब कि वही है ना कि जड़ी कविता है ना ये खुद ब खुद ही आ जाती है, पता नहीं होंगे कि केड़ी जनर च उतरनी है, मन च ख्याल केड़े दे आ जाने हैं, कई
2: जी
3: बारी सुते प्या नूं भी कई बारी कविता जड़ी है जगा देंदी है, कई बारी मेरे नाल भी एदा होया, ते कदी तो मैं मुहब्बत ते लिख दिनी हाँ, कदी मैं अध्यात्मक ते लिख दिनी हाँ, कदी मैं दुनियावी जड़ियां चीजा होंगे जिवें सोसाइटी है ओ ते लिख दिनी हाँ,
2: जी
3: ये ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2: ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਉਹ ਕਵਿਤਾ?
3: ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੈ
2: ਜੀ।
3: ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਤਵਾਰ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਤਵਾਰ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਚਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਚਾਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਦਾਰ। ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਕਰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਤਲਵਾਰ। ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਪਿਆ।
2: ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ।
3: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਗਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। हमारे आज के मेहमान थे मिस जोबन रूप छिन्ना जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सोपोरी।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: सिस्ती, कुछ तेरे दिल में सिस्ती, कुछ मेरे दिल में सिस्ती, जमाना है पूरा।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85%

0: अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखे, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो विथस्ता अंबाले का अपना रेडियो। सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 ओमेगा हर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। गन्ने की 3 नई किस्में तैयार, अगले वर्ष तक उपलब्ध होंगी। 1 एकड़ में 550 से 700 क्विंटल उत्पादन। किस्मों के विकास के दौरान पैदावार, गुणवत्ता व फसल की मजबूती पर काम हुआ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने गन्ने की 3 नई किस्में तैयार की हैं। COH 195, COH 204, COH 205 को किसानों की जरूरत और क्षेत्र की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। तीनों प्रजातियों का फाइनल ट्रायल चल रहा है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर अगले साल इन किस्मों को किसानों के लिए रिलीज करने की तैयारी है। नई किस्मों के आने से प्रदेश में गन्ना किसानों को उत्पादन बढ़ाने के साथ बेहतर गुणवत्ता वाली फसल का विकल्प मिलेगा। वैज्ञानिकों ने इन किस्मों के विकास के दौरान पैदावार, गन्ने की गुणवत्ता और फसल की मजबूती पर भी काम किया है। ऐसी प्रजातियां तैयार करने का प्रयास किया है जो खेत में बेहतर प्रदर्शन व किसानों के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हों। नई किस्मों में चीनी की रिकवरी अधिक मिलने की संभावना है। इससे गन्ना उत्पादकों को फसल की गुणवत्ता के लिहाज से भी लाभ मिल सकता है। तीनों किस्मों की प्रकृति अलग अलग रखी गई है जो किसानों को क्षेत्र व उपलब्ध समय के अनुसार विकल्प मिल सके। COH 195, COH 204 मध्य पछेती श्रेणी में रखी गई हैं, जबकि COH 205 अगेती किस्म है। इससे गन्ने की फसल के प्रबंधन और कटाई की अवधि को लेकर किसानों के पास अलग अलग विकल्प उपलब्ध होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी नई किस्म को किसानों तक पहुंचाने से पहले उसका विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण जरूरी होता है। गन्ने की 3 नई किस्मों का फाइनल ट्रायल चल रहा है। इसमें उत्पादन क्षमता के साथ चीनी रिकवरी, रोग प्रतिरोधकता और मजबूत जड़ तंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कहा है डॉक्टर सुधीर शर्मा, वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। किसानों को गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने का विकल्प मिलेगा। नई किस्मों में सबसे प्रमुख आकर्षण इनकी उत्पादन क्षमता है। COH 195 से 600 से 650 क्विंटल, COH 204 से 650 से 700 क्विंटल और COH 205 से 550 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने का विकल्प मिलेगा। 3 सीजन में कर सकेंगे बिजाई। वैज्ञानिकों ने तीनों किस्मों को अलग अलग अवधि के हिसाब से विकसित किया है। गन्ने की बिजाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 अप्रैल से 15 मई के बीच की जा सकती है। COH 195 व 204 मध्य पछेती, जबकि COH 205 अगेती किस्म है। रोग प्रतिरोधी मजबूत जड़ें। नई किस्मों में सिर्फ पैदावार पर ही जोर नहीं दिया गया है, इसमें चीनी की रिकवरी अधिक रखने के साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी बताई गई है। मजबूत जड़ें इसकी खासियत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मजबूत जड़ तंत्र के कारण फसल के गिरने की संभावना भी कम रहेगी। बारिश से गोभी में काला सड़न रोग आया, संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। प्रदेश में 15,000 हेक्टेयर में बंद गोभी, 28,000 हेक्टेयर में फूल गोभी का उत्पादन। सितंबर में हुई बारिश का प्रभाव गोभी की फसल पर देखने को मिल रहा है। गोभी में काला सड़न रोग, ब्लैक रोट, देखने को मिल रहा है। बागवानी विभाग के सर्वे में सोनीपत के पल्लड़ी कला और नत्थुपुर में गोभी की फसल में रोग के लक्षण दिखे हैं। प्रदेश में 15,000 हेक्टेयर में बंद गोभी उगाई जाती है, 3.29 लाख MT उत्पादन होता है। 28,000 हेक्टेयर में फूल गोभी लगी है, 5.97 MT उत्पादन होगा। पानीपत, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद, सोनीपत, कैथल जिलों में गोभी लगाई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषक डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि गोभी फसल तब काटी जाती है जब गांठ 5 से 7.5 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है। 2 से 250 ग्राम के वजन की गांठें नरम व रेशा रहित होती हैं।
फूल गोभी, बंद गोभी व गांठ गोभी के रोग लक्षण व हानिकारक कीड़ों की निगरानी व समयबद्ध उपचार से बेहतर उत्पादन हो सकता है। फिलहाल संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करने की सलाह दी गई है। रोग की रोकथाम और सावधानियां। पत्तों की नसें काली पड़ जाती हैं, सूखकर गिर जाते हैं, गोभी काली पड़ जाती है। फिलहाल संक्रमित पत्तियों को नष्ट करें। बीज ऐसे क्षेत्र में प्राप्त करें जो जीवाणु रोग व पौध रोग रहित हो। बिजाई से पहले कैप्टान या थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करें। फसल पर 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर तथा 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 1 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करें। फसल कटाई के बाद बची हुई बीमारी वाले कूड़े कचरे के ढेर को जलाकर नष्ट करें। गोभी में ये बीमारी भी सामने आती है, डायमंड बैक मोथ। यह हरे रंग का छोटा कीट है। इसकी छोटी सुंडियां पत्तियों को खुरचकर खाती हैं, सफेद झिल्ली छोड़ देती है, बड़ी सुंडियां खुराक बनाती हैं। 400 ग्राम बैसिलस थियोरिन जीएसिस बायोस्प 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। तंबाकू की सुंडी। इसकी छोटी सुंडियां एक जगह इकट्ठी रहती हैं, बड़ी होने पर सारे खेत में फैल जाती हैं। प्रकोप सितंबर से नवंबर तक रहता है। रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें। 10 दिन बाद अगला छिड़काव करें। मल्टी लेयर फार्मिंग, एक साथ 4 फसलें लेकर आय बढ़ा रहे किसान। 31 अक्टूबर तक मूली, गाजर, शलगम, पालक व मेथी लगाने की सलाह। खेती में लागत कम करने, मुनाफा बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना समय की मांग है। अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर किसान मल्टी लेयर फार्मिंग यानी बहुस्तरीय खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर कमल सैनी DHO करनाल के अनुसार इस वैज्ञानिक तकनीक में किसान एक ही समय पर एक खेत में 3 से 4 अलग अलग फसलें एक साथ उगाते हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि कम जमीन और सीमित संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होता है, जिससे उत्पादन और कमाई दोनों बढ़ते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए ढांचा तैयार करना पूरी तरह से वैज्ञानिक गणित पर आधारित है। खेत में सबसे पहले 8 से 10 फीट लंबे बांस गाड़े जाते हैं। इन बांसों को लोहे के मजबूत तार से जोड़कर एक जाल बनाया जाता है। जाल के ऊपर हल्की घास या जाली डाली जाती है ताकि सूरज की सीधी धूप खेत में ना आए व छान कर पहुँचे। ढांचा ऐसे डिजाइन किया है कि पौधों की 4 परतें बन सकें। सबसे नीचे जड़ वाली फसल, ऊपर सतह वाली फसल, फिर सतह और मचान के बीच मध्य ऊंचाई वाले पौधे और सबसे ऊपर मचान पर बेल वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। किसान 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सीधे खेत में मूली, गाजर, शलगम, पालक और मेथी की बुवाई करें। वहीं टमाटर, बैंगन या मिर्ची की 25 से 30 दिन पुरानी पनीरी नर्सरी की इस समय मुख्य खेत में रोपाई करें, जो कि अगस्त के अंत में तैयार हो जाती है। सतह पर पालक मेथी उगाएं व मचान पर लौकी की बेल चढ़ाएं। मूली, शलगम 45 से 50 दिन में बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। गाजर को तैयार होने में 80 से 90 दिन लगते हैं। सतह पर पालक मेथी उगाई जाती है, ये मात्र 30 से 40 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जमीन की सतह ऊपर मचान के बीच की मध्य ऊंचाई पर लगाई गई टमाटर, बैंगन या मिर्च की पनीरी से 60 से 70 दिन में पैदावार मिलनी शुरू हो जाती है। मचान पर लौकी या बेल वाली मटर चढ़ाई जाती है, जो 60 से 65 दिन में तैयार होती है। सर्दियों में पाले का असर कम होता है व बीजों का 100% अंकुरण सुनिश्चित होता है। जड़ों की गहराई और पानी की बचत का विज्ञान। इस तकनीक का वैज्ञानिक फायदा यह है कि हर फसल की जड़ें मिट्टी में अलग अलग गहराई तक जाती हैं। इससे मिट्टी के किसी एक पोषक तत्व की कमी नहीं होती। जब एक ही खेत में 4 फसलें होती हैं,
तो सिंचाई के लिए पानी का पूरा इस्तेमाल होता है व लगभग 70% तक पानी की बचत होती है। मचान की वजह से वाष्पीकरण कम होता है, खेत में खाली जगह ना रहने से खरपतवार नहीं उगते, इससे निराई गुड़ाई का खर्च बचता है। एक एकड़ जमीन में इससे किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: अरे कौन थी बोल रहे जी?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम मन्नू।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो

कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star. Hum Safar Zindagi Ka.
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत

बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

दस्ता यही पैगाम पहुंचाए, खुला बोर मत छोड़ो हर घर तक हर गांव तक आए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

दस्ता यही पैगाम पहुंचाए, खुला बोर मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द। आज के आमंत्रित मेहमान हैं एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर श्री रोमेश पंडिता जी, एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर सिंगर श्री भारत पंडित जी और व्यवसायी श्री संजीव रैना जी। इनसे बात करेंगे भारत सोपोरी, प्रोग्राम रिकॉर्ड एडिट निर्देशित एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज का जो कार्यक्रम है इसका शीर्षक है विस्थापन का दर्द। विस्थापन एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसा दर्द है जब एक कम्युनिटी को, एक समूह को घर छोड़ना पड़ता है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या तकलीफें आती है और उन तकलीफों के साथ कौन कौन से मुश्किलें आती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला से प्रसारण करता है और संस्था वेस्ट थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड इस सामुदायिक रेडियो को चलाती है। आप ये भी सभी जानते हैं कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और आज से 36 वर्ष पहले मैं इस मेरी जिंदगी की दूसरी जन्मभूमि पर आया था, अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपने कर्म करने के लिए। और हमेशा ये मन में था कि अंबाला ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं अंबाला को क्या दे सकता हूँ। शायद पैसे के रूप में तो मैं कुछ नहीं दे पाया, पर मेरे मन में ये जरूर था कि अंबाला को एक आवाज देंगे, आवाज देने की कोशिश करेंगे, जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हैं 1 सितंबर 2023 से। इससे पहले भी ये वेब एंड इंटरनेट रेडियो रेडियो वितस्ता के नाम से आपके साथ पिछले 7 साल से जुड़ा है। आज हम ये कार्यक्रम पहली बार आपके सामने ला रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। इस समय मेरे पास बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित है और उनका मैं तारुफ आपसे कराऊं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था, जिसके कारण लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे, जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। ये विस्थापन 1990 में शुरू हुए उग्रवाद और हिंसा के कारण हुआ था, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों को अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत बार ऐसे भी कहा गया कि कश्मीरी पंडित वहां से डर के निकले, पर ऐसा नहीं है। हालात उस तरीके के हो गए जो वहां पर अकलियत में है, यानी कि कम परसेंटेज के लोग हैं जैसे कश्मीरी पंडित, और जो वहां पर अक्सरियत है, जो ज्यादा लोग वहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां पर ऐसे हालात हो गए कि हमें सबसे पहले संपत्ति, हमारे काम, हमारी नौकरियां, वो सब छोड़ने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ऐसा कहा जाता है जान है तो जहां है, और साथ में हमारी माता बहनों का, उनकी इज्जत बचाने के लिए हमें विस्थापन करना पड़ा। ये विस्थापन आसान नहीं था। आज हम इसी बात को आपके सामने ला रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम कुछ कश्मीरी में भी और हिंदी में ज्यादातर करेंगे ताकि आप लोग भी इस दर्द को महसूस करें। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जिनको हम महसूस करते हैं और दिल तक वो दर्द चला जाता है। मैं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते इन 36 वर्षों में कभी भी इस बात पर अपना दुख जाहिर नहीं किया कि मैंने खोया क्या है। मैंने इन 36 वर्षों में जो पाया है उसी को सामने रख के मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। जो समुदाय मुझे आसपास मिले, चाहे मेरे प्रोफेशन में, चाहे मेरे पैशन में, मैंने देखा कि मेरे साथ मैंने हमेशा कोशिश की कि उनकी भी उन्नति उतनी ही हो जाए जितनी मैंने अपनी करने की कोशिश की। तो आइए इस कार्यक्रम में जो आज हमारे साथ आमंत्रित मेहमान है, उनमें से सबसे पहले मैं नाम लेता हूं चंडीगढ़ में रहने वाले रोमेश पंडिता जी का, जो फिल्म मेकर है, सोशल एक्टिविस्ट है, एक्टर है, डायरेक्टर है, और हमेशा उनका जो मन है वो कश्मीर और उस जगह के साथ जुड़ा है जहां से वो बिलोंग करते हैं। सारी बात हम उनसे भी जानेंगे। और इनके साथ हमारे साथ है भारत पंडित, जो मुंबई में रहते हैं। ये फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर है, गायक है, कंपोजर है और एक्टर और डायरेक्टर भी है। आज हमें बहुत खुशी है कि ये लोग हमारे साथ है, और इनके साथ ही हमारे साथ है संजीव रैना, जो चंडीगढ़ से है, एक व्यवसायी है, सोशल एक्टिविस्ट है और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं। रमेश जी, भारत जी और संजीव रैना जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप अपने शब्दों से अपना परिचय दें।
2: नमस्कार भारत जी, थैंक यू। पहले तो आपने इमोशनल कर दिया, फिर वही कहानी आपने दोहराई जिसको हम भूलना चाहते हैं, मगर ये ऐसे रिश्ते जख्म हैं जो अभी तक रिस रहे हैं। आपने जो कश्मीर का जिक्र किया, जो 1990 में हमें वहां से निकलना पड़ा, क्यों निकलना पड़ा सबको पता है इस टाइम, मगर मैं इसमें ज्यादा बिलीफ रखता हूं कि हमें आगे देखना चाहिए। मगर क्या करें, कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द रिश्ता है तो, और आपने छेड़ दिया तो रिसने लगा। जैसे आपने बताया, मेरा नाम रोमेश पंडता है। कश्मीर में एक सोपोर जगह है, वैसे सब लोग जानते होंगे क्योंकि उग्रवाद वहीं से शुरू हुआ था। मैं उस सोपोर का रहने वाला हूं, और वहां से जब हम 1990 में वहां से निकले थे, विस्थापित हुए थे, फोर्सफुल एग्जोडस हमारा हुआ था, बिखरते बिखरते इधर उधर जाके हम, यानी कि मैं और मेरी फैमिली, हम चंडीगढ़ में सेटल हो गए। और चंडीगढ़ में हमारे लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज थी कश्मीरी पंडितों के लिए कि हम, जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो हमेशा हमें एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देते थे। तब तो समझ नहीं आता था क्यों इतना जोर दिया जाता, बट आज समझ आती है क्योंकि उसी एजुकेशन, उसी की वजह से हम आज जिस मुकाम पे भी पहुंच जाए, सिर्फ उसी एजुकेशन के कारण, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी जो दूरदृष्टि थी उसके कारण हम पहुंचे। और अपनी अपनी लाइफों में आज सेटल है, मगर वही कहते हैं ना कि राम जी ने तो वनवास लिया 14 साल के लिए, हमारे तो भी 36 साल हुए हैं और पता भी नहीं कि आगे कितने और साल होंगे। 36 घंटे के लिए कोई निकलता ना घर से, उसको घर की याद आती है। यहां तो 36 साल हो गए, चाहे कहीं भी बसे बट वो कश्मीर जो दिल और आत्मा में बसा है अभी भी हमें बुला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। बस अभी इतना ही कहना चाहूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। भारत जी,
3: धन्यवाद। भारत सपूरी जी और रमेश जी, आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल हमारे समक्ष आती हैं, वो रातें या वो रात अगर कहें वहाँ की, जब हमको कश्मीर से निकलना पड़ा, पलायन करना पड़ा, बहुत ही दर्दनाक रात थी वो। और पता नहीं पल पल में ये पूरा सा जो हमने वहाँ पे एक बगीचा, एक गुलशन बनाया था, वो ऐसे बिखर गया कि हमें फूलों की पंखड़ियाँ तक कहीं नहीं मिली, और जो मिला तो बस दर्द भरी रातें, और मिला पत्थर, ईंट, बिच्छू, सांप और जहरीली धूप। हम कश्मीर में धूप देखने के लिए बड़ा तरसते थे क्योंकि कश्मीर की रातें बड़ी ठंडी होती हैं, और उसी धूप से हम इतना डरने लगे क्योंकि इतनी तीखी धूप जम्मू में, और इतनी बेचैनी, और वो जो अंदर की त्रासदी थी उसने हमको बहुत झिंझोड़ के रख दिया है। अब देखिए, जैसा रमेश जी ने बोला कि हमारे पास विद्या का जो ज्ञान है वो तो है ही, हर एक कश्मीरी पंडित के पास था, तो उसी का सहारा लेते हुए और बिना कोई विलंब किए हुए उन्होंने अपने आप को संवारने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, और निकल पड़े कई दिशाओं में। जो ना निकल पाए वो कश्मीर, अपने जम्मू में ही रह गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ते अपनी जिंदगियों को संजोया और फिर से उठने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर इन 35 सालों में वो एक अपना मकाम पा चुके। लेकिन ये मकाम होने के बावजूद भी एक अंदर से एक कसक रही है कि भाई वो कश्मीर, वो जगह जहाँ से हमें, मैं, मेरा ताल्लुक बारामुल्ला से है, मैं बारामुल्ला से आता हूँ, पहले सोपोर और फिर बारामुल्ला, तो वो छूटता नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेस में हम उस कश्मीर को ढूंढते रहते हैं। कहीं आपने उठ के चिनार का बीज वहाँ से उठा के कहीं पे लगा दिया, कहीं आपने किसी सब्जी का बीज लाया वहाँ से और यहाँ पे बो लिया तो उसमें आपको कश्मीर दिखता है, कहीं आपने वहां से अपने मकान की कोई सी ईंट उठा के इधर लगा दी तो उसमें आपको ये मकान अपना लग, गोया कि ऐसा है कि भाई आपको हर एक चीज में, हर एक पल में आपको वो कश्मीर अपने अंदर दिखता है। तो जैसे कहें कि कभी भी हम उन उस कश्मीर के अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, हमारे बहुत ही करीबी थे वो घर। और खासकर किसी भी कश्मीरी के लिए अपना घर होना बहुत जरूरी है और वो उसकी अहमियत काफी ज्यादा है। तो एक कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स बट कश्मीरी मुस्लिम्स आल्सो। ये अपना घर जो होता है, मतलब कश्मीरी किराए के मकानों में रहना पसंद कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए अपना घर अपना ही घर होता है। और वहाँ पे जिस तरह से हम रहते थे और अपने घरों को जिस तरह बनाया था, मैं तो पर्सनली अगर आप पूछें मुझसे तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कश्मीर को छोड़ के बाहर निकलूंगा। कई लोग जाते थे ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए, इसके, लेकिन वापस कश्मीर में ही आना था, वापस उसी जगह पे जहाँ जहाँ आपने बचपन से खेला है, जहाँ आपने बचपन देखा है, जहाँ आप लड़कपन हुआ है, आपकी बहुत सारी शामें गुजरी हैं, सुबह गुजरी हैं, मंदिर की घंटियाँ सुनी हैं आपने, आप वही, मतलब जितनी भी रिवायतें हैं अपनी, जितनी भी रिचुअल्स हैं हमारे, जितने भी वो हमारे काम थे वहाँ के, तो उन्हीं चीज़ों में हम बिल्कुल मस्त थे। कोई दिक्कत उस हिसाब की नहीं थी, दिक्कत जो थी वो कहीं और पनप रही थी, जो हमको दिखी नहीं। हम बड़े अपने ही सरल भाव से बड़े आनंद में रह रहे थे वहाँ पे, लेकिन एक ये त्रासदी जो थी जो हमारे ऊपर आ गई और हमको निकलना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अपनी सलाहियतों के बिना पर, जो हमारी सलाहियतें वहाँ पे भी थीं लेकिन उनका अच्छे तरह से उसका हो नहीं पाया था बाकी आगे, लेकिन सलाहियतों के बिना पे हमने अपनी जिंदगियों को संजोया है, संवारा है और इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो मेरा इतना मानना है इसके बारे में। जी
1: संजीव जी के पास जाने से पहले मैं भारत जी आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने अपने घर की बात की
3: जी।
1: हम पिछले 36 वर्षों से विस्थापन में रह रहे हैं अलग अलग जगहों पर
3: जी।
1: तो क्या हम वो अपना घर बना पाए?
3: जी नहीं, वो अपना घर नहीं बना पाए हम, बिल्कुल नहीं बना पाए हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, हम बनाने की कोशिश में लगे हैं पिछले 36 सालों में, लेकिन नहीं बनता है, क्योंकि जो होम एंड हर्थ होती है, वो जहाँ आपका जन्म स्थान है, वो आपको कहीं ना कहीं वो मिस तो आप करेंगे ही करेंगे। वहाँ की आबहवा, वहाँ की खुशबू, वहाँ की महक, वहाँ की क्यूजीन, वहाँ का उठना बैठना, रहना सहना, आपका दरिया, आपकी वितस्ता, कैसे भूल सकते हैं आप? आपका नाम ही रेडियो वितस्ता है, तो इसी पर मेरे ख्याल में आपने ये रखा हुआ है नाम। तो उस वितस्ता को आप कहाँ पाएंगे? वो यारबल जिसे हम कश्मीरी में कहते थे, यारबल मतलब जिसे मराठी में कट्टा बोलते हैं और यहाँ पे बैठक बोलते हैं, तो वो एक घाट जहाँ पे आप बैठ के चार बातें करें अपने दोस्तों के साथ, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन वो एक बात जो होती है, जो इशारों से बात समझ आती थी हमको, वो इशारों से बात समझ नहीं आएगी यहाँ पे, तो मुझे ऐसा मेरा मानना है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी।
2: जी भरत जी धन्यवाद, आपने हमें 3-4 दोस्त हमारे यहाँ जमा हो गए, रमेश जी ने आपको डिटेल में बताया, भरत जी ने पूरा ही उसका विवरण किया। तो इसी विवरण के साथ जब हम कश्मीर छोड़ के आए तो मन में तो था कि हमें घर से भगाया गया, और मैंने चंडीगढ़ में सबने मकान दुकान सबने ले लिए, कश्मीरी पंडित सभी वेल सेटल्ड है। अब मैंने उसके साथ सोचा कि मैं डिफरेंट क्या करूं, तो मैंने ज़मीन ले ली और वहां कश्मीर बनाने की कोशिश की कि मैंने एप्पल कल्टिवेशन की, एप्पल हार्वेस्ट मैंने किया और मैंने सेब इम्पोर्ट ट्रीज कराए, जिसकी मुझे मेरे फ्रेंड्स नोनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के थे वो उन्होंने हेल्प की, डायरेक्टर रिसर्च डायरेक्टर कश्मीर के थे वो मेरे बैचमेट थे, वो उन्होंने सपोर्ट किया और अच्छी तरह प्रोडक्शन मेरी की, जहाँ मैं वस्तहाक जो कश्मीरी खाते हैं, वो हाक वस्तहाक जो हमारा कर्ट हाक बोलते हैं, वो ये हमारी कुजीन कश्मीरी सब्जियाँ हैं, वो मैं वहाँ कल्टिवेट की। तो ये मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज मैं कश्मीरी हूँ, मन में मेरा कश्मीर बसा हुआ है, इतने सब सेटल होने के बाद भी कुछ खोया हुआ है, विच आई फील कि कुछ ना कुछ दर्द कहीं छुपा हुआ, जैसे रमेश भाई ने बोला कि रिश्ता वो रिश्ते
1: जख्म
2: जख्म
1: रिश्ते
2: जो उन्होंने फिल्म बनाई है, तो रिश्ते जख्म वाकई में वो मैं वर्चुअली के सामने कहते फिल्म मेरी देख लेना, मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे सब याद आ जाता, मुझे आंसू आ जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल वो फिल्म बनाई जो हमारे साथ गुजरा हुआ हुआ। इतना प्यार वहाँ था, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं बचपन में मेरे पड़ोसी डार साहब रहते थे, तो एक दिन मैं स्कूल में था, नॉटी थे, तो मैं सिगरेट उठा के सिगरेट की बिट वो पी रहा था, डार साहब ने कहीं देख ली, डार साहब ने 2-3 मेरे थप्पड़ मार दिया वहाँ,
4: मैं बात रही याद गई, बोल डार साहब बोल के मेरे घर चला गया। सुबह 6 बजे डार साहब घर पहुंच गए। मेरी मम्मी और डैडी को कहते ये सिगरेट पी रहा था। वो प्यार और वो पहले इज्जत हुआ करती थी वो कहाँ है, ऑल ऑफ सडन इतने सालों में 90 में कहाँ उभर आई कि वो सब भूल गए। जब हम घर से निकले किसी ने ये भी नहीं बोला कि तुम रुक जाओ। तो इट वॉज ए फोर्सिबल
1: एक्सोडस।
4: और ये दर्द हर एक कश्मीरी हिंदू को मन में तन में सब जगह मरेगा तभी याद रहेगी। अब आगे फ्यूचर जनरेशन उनको हमसे ज्यादा है। कश्मीर में हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि है, हम वहाँ जाएंगे भी इज्जत से जाना चाहते हैं। ये मेरा कहना।
1: संजय जी, आपने कहा कि मैंने कोशिश की कि मैं चंडीगढ़ में कश्मीर को बनाऊं। आपने जो कोशिश की वो सराहनीय है, पर मुझे एक बात आपसे जाननी है। जो हवा का झोंका हमें कश्मीर में रह के उस चिनार के दरख्त से आता था, एक दिल को तसल्ली देता था, क्या वो कश्मीर चंडीगढ़ में बन पाए?
4: वो तो कभी नहीं बने।
2: ये तो यार महाराज जी वही कहानी हो गई, क्योंकि जब आप कभी कहानी लिखने बैठते हो, कहानी लिखते हो कश्मीर के बारे में, एग्जैक्टली संजीव ने कहानी एक शुरू की है, इसका एप्पल कल्टिवेशन, बाकी चीजें जो इसने नाम लिया, रीड्स लाइक दैट कहानी। वो कहानी आपको वो चीज नहीं देगी जो आपको रियलिटी जब आप बैठेंगे चिनार के, या जैसे अभी इसने यारबल बोल दिया
1: जी।
2: तो ये वो चीज नहीं होती है। अब मैं जब कश्मीर जाता हूँ, बिलीव मी, जब मैं खासकर सोपोर जाता हूँ, मैं जो जैसे अभी हमारे भारत पंडित जी ने बोल दिया, एक यारबल से पता नहीं क्या अट्रैक्शन थी। यारबल मीन्स कि जो दरिया का किनारा होता है, उसे क्या अट्रैक्शन थी कि मंदिर के किनारे बैठ के वहां पे, और वहां बैठ के जितना दरिया में पानी बह रहा होता ना, उससे ज्यादा मेरी आंखों से अपने दरिया बह रहा होता
1: जी।
2: वो चीज हम नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। खुश है, खुशहाल है, लगता है कि जिंदगी बहुत खुशहाल है, मगर जो अंदर दर्द है। मेरा एक बड़ा फेवरेट शेर है, लोग सोचते हैं खुश हूं मुस्कुराता हूं, बट हर हंसी हंसने से पहले जार जार रोता हूं। वही हर कश्मीरी पंडित का हाल है। उनको जैसे ही कहीं पे कश्मीर का नाम आएगा, उनकी इतनी लंबी आह होगी कि वो कश्मीर की हवाओं को भी मार देगी। सो ये कश्मीर कहीं नहीं निकल सकता, सिंपल सी बात है। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो संजीव ने भी बोला ना, कि जो जब से हम वहां से निकले थे, मगर मेरा जो मानना इस चीज का मानना है कि हमें आज नहीं तो कल वापस जाना चाहिए। मैं हमेशा लिखता हूँ, कभी कभी कुछ तुकबंदी भी करता हूँ। मैंने एक फिल्म बनाई हुई थी, उसमें मैंने एक सॉन्ग भी लिखा था, जुहा वंदियो हा घर में आने, मीन्स सदके जाऊं अपने घर पे। उसमें एक था विंती छा ढबे पेट ताप प्यवान ब्रांड कहीं विंती छा रूद छला।
1: क्या बात,
2: मीन्स की जो डब मीन्स वरंडा ही बोलूंगा मैं,
1: हाँ।
2: वरंडा पे आज भी, क्योंकि सुबह की धूप जो आती थी ना,
1: सुहानी
2: होती थी, और हमारी माताएं, जो हमारी माताएं बहनें थी, वो सुबह उठ के, वहां रूटीन था कश्मीरी पंडितों में कि जो बरामदा हमारा बाहर का होता है, सीढ़ियां जब पहले चढ़ते हैं, वहां हमेशा ग्राउंड से ऊपर थोड़ा मकान बनाए जाते, उसको वहां धोना पड़ता था,
1: पूजा पाठ करनी,
2: पूजा पाठ, वो ऑलमोस्ट पूजा ही होती थी, क्योंकि आप अपने जो वो कहते हैं कि यहाँ से हमारे जो है ना गृह लक्ष्मी वगैरह आती है, तो इसको धोना। तो ये हमारे आज भी कई माताएं मैंने देखा कि जबकि फ्लैटों में रहते हैं, बाहर पानी का छिड़काव करते
1: लगा,
2: वो कश्मीरी तो है ना साथ।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विस्थापन का दर्द। ये एक ऐसा दर्द है जो सुबह से लेकर शाम तक हमें कचोटता है, हमें तकलीफ देता है, पर हमारे कर्म जो है वो हमें रुकने नहीं देते। हम हर दिन कुछ नया सोचते हैं और नया करने की कोशिश करते हैं। अभी भारत जी से ही हम पूछते हैं, सभी श्रोताओं के लिए हम भारत जी को अनुरोध करेंगे कि वो कुछ हमें कश्मीर की कुछ फिजाओं को गुनगुना के भी सुनाएं। बट सबसे पहले मैं ये तीनों से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर से तो हम बाहर आ गए, क्या हमारे भीतर जो कश्मीर है, क्या उसको बाहर कभी निकाला जा सकता है?
3: भरत जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और जो बात कर ही रहे थे उसी का एक्सटेंशन है ये
1: जी।
3: ये जैसे पहले भी बोला गया हमने कि कतई नामुमकिन है, वो ये नहीं हो पाएगा। जो रिवायतें हैं हमारी, जो कदरें हैं हमारी, जो रिचुअल्स हैं हमारी, जो हमने लम्हे वहाँ पे बिताए हैं, तो उनको हम बिल्कुल अपने अंदर से जुदा नहीं कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात बताएं आपको, अभी बात कर रहे थे यारबल की या सोपोर की, दरिया की बात करें, या किसी

0: तो ऐसी चीजें फिर क्या करें, फिर उसका एक नवेद बना के आप खा लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जब याद आती हैं तो आप कैसे निकाल पाओगे अपने अंदर से। बात यही है ना कि कोई ईंट लेके आता है वहां से, कोई अब इन्होंने संजीव जी ने एप्पल बनाया, इनको एप्पल का कारोबार थोड़ी करना है, लेकिन ये है कि भाई चलो मुझ में थोड़ा सा कश्मीर कहीं पे, या हम कमरों में दरिया बिछाते हैं जो कश्मीर की दरिया हो
1: जी,
0: जैसे मैंने देखी आपके स्टूडियो में भी है
1: जी।
0: तो इसी तरह जो भी चीजें हमको मिलती हैं उन चीजों को अपने, ताकि हम उस माहौल में रहें, भले ही ये मेक बिलीव माहौल हो, लेकिन वो माहौल हमारे साथ बरकरार रहे, क्योंकि उस माहौल से हमारी नींव पड़ी है, उस माहौल में हम पले हैं, जन्मे हैं, सांसें ली हैं, तो उन सांसों को हम, अपनी सांसों को बरकरार रखना चाहते हैं इस माहौल में जो हम नया क्रिएट करें, रादर रिक्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो ये मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता हमसे, जैसे मैंने पहले भी आपसे एक प्रोग्राम में बोला था, यू कैन टेक समबड़ी आउट फ्रॉम कश्मीर बट यू कैन नॉट टेक आउट कश्मीर फ्रॉम समबड़ी। तो जो कश्मीर हमारे अंदर है वो समाहित है और उसमें कोई दो राय नहीं कि हम उससे जुदा हो सकते हैं। जी बस
1: संजीव जी, आप क्या कहते हैं कि जो हमारे अंदर कश्मीर है और जो हमारे परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, क्या हम ये दर्द उन तक पहुंचा पाए या ये दर्द ऑटोमेटिकली उन तक पहुंचा है?
2: ये दर्द तो मन से निकाल नहीं सकते भरत जी। जब आपके स्टेज चढ़ रहा था, आपने हाक बैगों में वो उगाया है तो वो एक इंडिकेशन है कि किसी भी कश्मीरी हिंदू के मन से आप कश्मीर निकाल नहीं सकते
1: जी।
2: तो वो पॉसिबल नहीं। और ये जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन हमारी जो नई है, पीढ़ी को ये हमारा बनता है कि उनको वो संस्कार दे दें और वो भूल ना जाए कश्मीर को। मगर मैं गौरव से ये कहता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको ज्यादा कश्मीर का दर्द है
1: जी।
2: तो ये निकल नहीं सकता,
1: ये नहीं निकल
2: सकता। जनरेशन टू जनरेशन, मैंने अपने बच्चों के वो उनको ज्यादा मेरे कश्मीर के बारे में ज्यादा, वो मैं बारामूला का हूँ, बारामूला के बारे में ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी, वहाँ क्या क्या था, कौन कौन सी फसलें थी और हम कैसे रहते थे वहाँ। तो ये बिल्कुल ही कतई किसी भी कश्मीरी के दिमाग से आप निकाल नहीं सकते जब तक कश्मीरी उसका लिंक है। पर हाँ, इसमें हमारा नुकसान जो हुआ है वो हमारा जो हमारे रिचुअल्स थे, जैसे भरत जी ने बताया कि रिचुअल्स हमारे रूट आउट, वो जब रूट आउट हो जाता है, प्लांट को ही निकाल देते तो वो मर जाता है। पर हम प्राउडली, मैं कहता हूँ मेरे समाज के मेरे जो बुजुर्ग थे, जो संस्कार उन्होंने हमें दिया है, उन रूट्स को हमने जमीन में गाड़ के रख दिया और हम आगे जाके वही चिनार वाला वृक्ष बन जाएंगे, तो वो हम कश्मीर जरूर वापस जाएंगे।

0: श्रोताओं, इस समय हमारे साथ है रोमेश पंटा। जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म मेकर है, इन्होंने कश्मीरी में एक फिल्म बनाई शिहज निंदर। अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो उसका मायने है कि आराम से सो जाना,
1: मीठी नींद।
0: जब हम विस्थापित हुए और उसके बाद शायद वो मीठी नींद कभी आ ही नहीं पाई। और मैं चाहूंगा कि मेरे ज्यादा ना बोलते हुए मैं रोमेश जी से ही कहूंगा कि उस फिल्म को जब आपने बनाया और जब हमने देखा, मेरे आंसू नहीं रुक पाए। खास करके जब आप आखिर में अपने घर जाके सोए और फिर आप उठे ही नहीं। क्या कंसेप्ट था? क्या वही है कि कुछ भी हो, कश्मीर हमारे भीतर से नहीं निकल सकता?
1: बिल्कुल सही आपने कहा, मैं यही कहने जा रहा था आपको। देखिए, पहली बात है, कश्मीर को हम बोलते हैं मर्ज कश्मीर, मीन्स माँ। माँ माँ को बोल सकता है क्या कोई? नहीं। दूसरी बात है, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी आत्मा में बस जाती है। और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हम अपनी माँ से करते हैं, कश्मीर के रूप में। यही वजह है आप मेरी जो भी फिल्म उठाएंगे, जो भी कहानी उठाएंगे, जो भी गाना उठाएंगे, वो सब रिलेटेड टू कश्मीर से मिलेगा आपको। जैसे आपने अभी जिक्र किया शीश चंद्र का, उससे पहले भी मैंने एक फिल्म बनाई थी जो संजीव ने भी जिक्र किया था, रिश्ते जख्म। वो वही है, वो रिश्ते जख्म ही है अभी तक। और शीश चंद्र एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। एक ऐसा शख्स जिसको डेमेंशिया हो जाता है, यानी कि जो भूल जाता सब कुछ, मगर उसको एक ही चीज याद रहती है। ये रियल स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूं। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था और ये एक बंदे की कहानी नहीं है, हजारों कश्मीरी पंडित जो बुजुर्ग है हमारे, उनकी कहानी है। जगती हमारा टाउनशिप एक है जहां पे कश्मीरी माइग्रेंट्स रहते हैं, वहां पे देखेंगे कितने सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको डेमेंशिया हुआ, मगर उनको अभी भी याद है कि घर जाना है, घर जाना है। जैसे उसमें बोलता है घर छूंगा सुन, घर छूंगा सुन। तो वही वीडियो देख के ही मुझे, मैं बहुत रोया हूं उस वीडियो को देख। उसके बाद उसको एक फिल्म रूप दे दिया था शीश चंद्र, जो काफी लाइक की गई। जैसे आप बोल रहे हो कि देख नहीं पाए आप उसको, नहीं क्यों देख नहीं देख पाए? क्योंकि आपके अंदर भी वो दर्द है। तो यही वजह है कि वो हर फिल्म मेरी, हर गाना मेरा, हर कोई चीज जो मेरी, कहीं नहीं तो केंद्रित मेरा सिर्फ कश्मीर पे ही रहता। अभी जिसमें आपने भी अभी एक रोल किया, अभी एक फिल्म बनाई है, वो भी कश्मीर पे ही बनाई थी, वो भी कश्मीरी स्टोरी पे आधारित है, वो कश्मीर में शूट किया उसको। तो ये कश्मीर हमारे दिल से, हमारी आत्मा से कभी नहीं निकलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ नहीं तो इस एज में जाके मैं वापस कश्मीर में बस जाऊं, ताकि वो शमशान तो मिले वहां,
0: ताकि आखिरी जो
1: सांस ले लें और हमारी जो जिस्म का धुआं है वो इस फिजा में मिल जाए, वो तड़प न रहे कहीं। मैं अपने बुजुर्गों को देखता था यार, उनकी तड़प होती थी। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं शमशान अगस पानी नहीं आ सकता। वो उनका सबसे बड़ा दर्द होता है कि मतलब जिनका दाह संस्कार किया गया था, वहां मेरा भी दाह संस्कार हो जाए, वो पॉसिबल नहीं था। तो यही मैं आज भी कहता हूं कि यही एक मन की एक आखिरी अभिलाषा है कि यार कम से कम कश्मीर में जाके बस जाए आखिरी टाइम। आपने आज बहुत सारे दर्द उबारे हमारे यार, हम तो यार दोस्त मिले थे कि कुछ आपस में कुछ हंसी मजाक कर रहे, आपने हमें कश्मीर ले लिया। और ये सबसे बड़ा दर्द इस टाइम कश्मीरी पंडितों का है, वो है कश्मीर से बाहर रहना।
0: सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सामुदायिक रेडियो से कार्यक्रम पंजाबी में सुनते हैं, हरियाणवी में सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं, और आप कश्मीरी संगीत भी सुनते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इस सामुदायिक रेडियो से इस समुदाय को भी जोड़ें और उनकी बात आप तक पहुंचाएं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ वो दर्द मेरे साथ भी होते हैं। पर आज मुझे ये लगा कि हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए और इस बात को आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए, उसी भाषा में जिस भाषा में आप समझ सकते हैं। मगर संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, तो थोड़ी सी बात हम कश्मीरी में भी करते हैं। भारत जी, तो मैं ये वक्त जन तो कश्मीर आयु तो कितने करो पानी जिंदगी शुरू, तो सानियन भोजन वालिंगन हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप कुछ ऐसा गुनगुनाएं जो उनके दिल तक वो कुछ बात पहुंच पाए।
2: देखिए, ऐसा जैसे हर एक कश्मीरी पंडित वहां से जब निकला, राजा निकाला गया, तो उसके बाद हर एक की अपनी अपनी दिशा रही जिस हिसाब से वो चले गए आगे चल पड़े। तो मैं भी जम्मू आके फिर मैंने सीधा जम्मू में एक साल रहा और उसके बाद बॉम्बे का रुख किया, जो तब बॉम्बे कहलाती थी अब मुंबई। तो तब से मैं मुंबई में ही रहा, वहाँ पे कई मीडिया हाउसेस के साथ रहा, जैसे पहले भी हमारी बात हुई है उसके बारे में। मैं इंडियन एक्सप्रेस में रहा हूँ 4-5 साल, फिर उसके बाद जी टी वी से जुड़ा रहा, फिर उनके जी टी वी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा रहा सिडनी में, और उसके बाद वैसे पिक्चर कंपनी में था हेड ऑफ एड फिल्म्स, और उसके बाद जो है सीईओ था मैग्ना फिल्म्स का, और उसके बाद अपना प्रोडक्शन हाउस है मेरा वाइड स्क्रीन पिक्चर्स, जहां हम स्टार्ट शुरुआत तो एड फिल्म्स से की है, और उसके बाद अब फीचर फिल्म्स की बातें चल रही हैं, फिर अपना ये जो वेब सीरीज होती हैं तो उनका काम चालू है। तो ये सब चीज़ें हमारी इस वक्त चल रही हैं, और उसके साथ साथ अब जैसे देखिए कश्मीर का कनेक्शन छूटता नहीं है, वहाँ पे भी जो भी कहानियाँ मैं क्रिएट करता हूँ जो लिखता हूँ, जो वेब सीरीज के बारे में बात चली है जहाँ भी चल रही है अभी एज वी स्पीक, उसमें भी कश्मीर है
0: जी,
2: उसमें भी कश्मीर का माहौल है। प्रॉब्ली दैट विल बी शॉट इन कश्मीर, आई डोंट नो वेयर, कश्मीर या सर्बिया या जहाँ पे भी जो भी हो, उसको छोड़ के फिर कश्मीर की जो चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, सैफरन है, हनी है, तो मैंने एक ई कॉमर्स पोर्टल भी शुरू कर दिया जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है।
0: हाँ।
2: तो उससे मैंने उसका नाम रखा है पश्ता।
0: ओके।
1: क्या बात।
2: तो इट्स लाइक पश्ता.com।
0: ओके।
2: तो वहाँ से हम लोग कश्मीर की जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्टेपल्स हैं, आपकी हनी है, सैफरन है, वो सब वहाँ से लाके उसको अच्छी तरह से क्लिनिकली पैकिंग करते हैं, और फिर वो उसका वितरण पूरे भारतवर्ष में
0: ऑनलाइन
2: होता है विद ऑल पेमेंट गेटवे एंड एवरीथिंग एल्स लाइक अमेज़न। सो वो एक अलग आयाम है, एक अलग एक पहलू है उसका। लेकिन मेरा कहने का मतलब, अगर आप देखेंगे दोनों चीज़ों को, चाहे मैं वाइड स्क्रीन पिक्चर्स की बात करूँ और चाहे मैं इसकी पश्त की बात करूँ, पश्त खैर नाम बहुत लोग बोले भाई ये पश्त समझेगा नहीं, पर मैंने पश्त नाम ही रखना है
1: क्योंकि
2: पश्त मुबारक होता है, ग्रीटिंग होता है, ब्लेसिंग होता है, तो मुझे यही चाहिए। तो इसलिए वो कश्मीर जो हम पहले से बात करें, जैसे रमेश जी बात की, जैसे संजीव जी ने बात की, आपने बात की, कश्मीर को हम अपने आप से जुदा कर नहीं सकते हैं। तो हम कार्यक्षेत्र में भी, अब मेरे पास एक ये फ्रीडम थी कि इस कार्यक्षेत्र में कश्मीर को लाऊं, वो मैंने लाया
0: जी।
2: कॉर्पोरेट हाउस में नहीं होता, हम यहाँ तो हमारे पास एक फ्रीडम है, तो ये हमने कर दिया क्योंकि वो अंदर का कश्मीर। तो ये रहा और ये सब चीजें चल रही हैं इस वक्त जी।
0: आपने कहा कि आप वेब सीरीज जब लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं या कोई उसमें गीत संगीत भी होता है कि संगीत के बिना तो हमारी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती, अधूरी है जिंदगी, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुनाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वोकली कुछ आप गुनगुनाएं ताकि हम उनको उन फिजाओं में लेके चले, उन बर्फ की चोटियों के भीतर, और उस कुछ भी आप गुनगुनाएं। मुझे पता है कि भारत जी एक ऐसे कलाकार है जिनको हम कहीं पर भी कहें और वो जरूर हमारे लिए
2: इम्प्रॉम्प्टो सा मामला है ये, बट अब जैसे हमारी बात हुई है अभी कि कश्मीर की जो त्रासदी हुई है, हम अब इतने 35 साल हो गए हैं, लेकिन अब 35 साल तो हो गए हैं, लेकिन अब हमको इसमें कैसे एडजस्ट करना, अपने आप को आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीरी में है शेर।
1: क्या बात।
2: मरगस मंश मरग छांडिंग, शाह मारन मन शाल मर।
1: क्या बात।
2: मरगस मंश मरग छांडिंग, शाह मारन मन शाल मर, र छप में चलित छुम करम सुबह सुबह के विचार। तो ये एक पॉजिटिव इसमें से निकलना कि भाई रात का अंधेरा उसको पीछे छोड़ के हम सुबह के एक शुभ प्रभात जो है सुबह की उसको देखने की कोशिश करें। तो इसमें आप चूंकि बता रहे हैं, थोड़ा गाना भी पड़ेगा मुझे,
0: कुछ गुनगुना
2: ये थोड़ा सा मैंने जैसे मतलब तो बंदी वगैरह करता रहता हूँ थोड़ा। इसमें भी अब यही है कि कश्मीर की बात हो रही है, हम लोग सोपोर में जब रहते थे तो वहाँ पे जिस मकान पे रहते थे, मकान में, तो वहाँ पे उसको दमदर कहते थे
0: जी।
2: जो खिड़की के पास एक थ्रेशोल्ड होते थे, तो उस दमदर में जब बर्फ गिरती थी ना बाहर से, तो मैं वो अपने दो दांत उस दमदर लकड़ी का होता उसमें लगा देता था और बर्फ को देखता रहता था। तो उसका थोड़ा सा मैंने, तो उसमें बड़ा मजा आता था जब छोटा बच्चा होता था ना, बड़ा मजा आता था। तो इसको थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा मैं, इसको कंपोज भी थोड़ा सा किया था।

शून्या दूठु अपारे, शमशान शून्या चु अपारे, अथवारी अपारी माचुका, अथवारी अपारी माचुका। लास्ट मारा मक्ता है इसका। कनवाम गयम अंदरिस में अंदराई,

0: बहुत सुंदर,
1: क्या बात है भारत जी। और सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो इस कार्यक्रम का मकसद था वो इन शब्दों के माध्यम से आपके दिल तक हमें पहुंचना था। और ऐसा कहा जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, वो सीधे मुख से लेके हमारे दिल तक पहुंचता है। और जो मेरे हम नाम भारत पंडित जी जो मुंबई से आए हैं, जो उन्होंने अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया, वो वही दर्द है जो हम ले रहे हैं अपने मन में, अपने मस्तिष्क में 36 वर्षों से, जब से हमारा विस्थापन हुआ है कश्मीर से। तो हम अगले सेगमेंट में आपसे मिलते हैं, आप बने रहिए, आपको हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विस्थापन का दर्द और ये इस कार्यक्रम का आखिरी भाग है। अभी तक जो हमने अपने दोस्तों से बात की और माहौल ऐसा बना कि जैसे इस समय हम अंबाला कैंट के इस स्टूडियो में नहीं होते हुए हम इस समय पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है कश्मीर की उन वादियों में है जहां पर ऊंची-ऊंची चोटियों से ठंडी ठंडी हवाएं और चिनार के बीच में क्रॉस करती हुई वो हवा हमारे दिल को छू जाती है। अभी भारत जी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक उन्होंने कॉमर्स पोर्टल बनाया है जिसका एड्रेस है posht.com। स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, posht.com। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप कश्मीर के बारे में जो भी कोई आपको ड्राई फ्रूट से लेके सैफरन तक जो भी कोई चीज आपको चाहिए होगी इस पोर्टल पर वो सब उपलब्ध है। तो आप जरूर विजिट करिएगा posht.com। एक बार फिर एड्रेस बता देता हूँ, posht.com। तो अब हम बात करते हैं संजीव रैना जी के साथ। संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर के बारे में हमने सारी बात की और हमने ये समझ लिया कि कश्मीर तो हमारे अंदर हमेशा रहेगा जब तक हमारी आखिरी सांस है। तो इस समय आप चंडीगढ़ में सेटल्ड है, आप अपनी जिंदगी को आगे की ओर लेके जा रहे हैं, नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो इस समय आप अपना समय किस काम के साथ व्यतीत कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपने आसपास को भी ग्रो कर रहे हैं जैसे आप ग्रो हो रहे हैं?
1: भरत जी, मैं पहले जॉब में मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, MBA किया है मैंने। पहली जॉब जो एग्रीकल्चर ऑफिसर किया, ज्वाइन किया था कश्मीर में, तो वो मैंने एक दिन नौकरी की, वो नौकरी छोड़ गया। तो उसके बाद मैंने गोदरेज में, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर रहा था
0: जी,
1: वो मैंने 30 साल वहाँ नौकरी की। उसके बाद लास्ट में मैंने एक असाइनमेंट लिया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था मैं
0: जी,
1: ज्ञान डेयरी लखनऊ
0: जी।
1: तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि बहुत सारी नौकरी होगी तो अपना ही कुछ करें, तो मैंने अपना आई हैव स्टार्ट माई ओन और कंपनी बाय नेम ऑफ नोवासिल एग्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट करते हैं। जितनी भी चंडीगढ़ में और यूपी में, J&K में, दिल्ली में जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे CAGA दिल्ली में, उसको भी हमने सर्विस देते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जैसे GMCH सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का, वहाँ भी हमारा टीम काम करती है। फोर्टीज में है, फोर्टीज जितने भी नॉर्थ इंडिया में 40 हॉस्पिटल्स, वहाँ हमारे काम लोग हैं जो काम करते हैं। तो कुल मिला के अच्छा ये मतलब नाम फॉर सर्विसेज है। इसके अलावा हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो हर्बल बेस्ड हैं फॉर डोमेस्टिक इंसेक्ट्स के लिए, जो शहरों में डोमेस्टिक घर में डोमेस्टिक इंसेक्ट्स हैं, रिपेलेंट है, मारते नहीं है। एक एक सेगमेंट, एक अवर डिवीजन है जो मारता है, दूसरा भगाता है। कुछ समाज में वो मारते नहीं है, जैन समाज में, तो उनकी जैसे रोडेंट रिपेलेंट
0: जी,
1: लीज रिपेलेंट लिजर्ड के लिए है
0: जी।
1: और एक टैबलेट लिए है, वो उसका विविल्स जो ड्राई फ्रूट्स में, जैसे हमने बोला भरत जी का ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें अगर वो 2 टैबलेट 1 किलो में रखेंगे तो उसमें विविल नहीं आएगी। जैसे आप चावल में रख सकते हैं, आप अपने दालों में रख सकते हैं, वो उसमें हमने प्रोडक्ट में काम किया। ये नोवासिल एग्री ब्रांच है और हमारा करनाल हरियाणा में भी ब्रांच है, ऑफिस है हमारा, और जम्मू में भी ऑफिस है। तो ये सभी जगह हमारे सर्विस सेंटर्स हैं जो हम पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी ऑपरेट करते हैं।
0: आपने पेस्ट कंट्रोल की बात की, तो अगर आपकी कंपनी नोवासिल के साथ कोई कांटेक्ट करना चाहे और उनको पेस्ट कंट्रोल के लिए आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं?
1: ये हमारी वेबसाइट है www.novasilagri.com, उस पे पूरा पोर्टल पे आ जाएगा, तो हम वहाँ नंबर भी आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा। जैसे ड्राई फ्रूट्स की बात चली या ये क्लॉथिंग की बात चली, उसमें भी हमारा टेबलेट काम आता है। तो सिल्वर फिश एक कीड़ा है जो बुक्स में लगता है और सिल्वर में स्लिक के कपड़ों में लगता है, शॉल में लगता है, उसमें भी आप वो टेबलेट रख सकते हो। तो वो इस रिलेटेड टू कश्मीर, तो वो दिल मन में वो तो वो चीज़ रहेगी रहेगी, वो क्या बात।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक संगीत की बात है, आप संगीत के बारे में केवल सुनते हैं या कुछ गुनगुनाते भी हैं?
1: वो अभी मेरे भाई मित्र वर्जी ने बोला, मैं वो
0: चलिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रोमेश जी से बात करते हैं। रोमेश जी, हमेशा जब भी सोशल मीडिया पे होते हैं तो उनके जो दर्द है, इनके जो रिश्ते जख्म है, वो रिश्ते रहते हैं। तो मैं रोमेश जी आपको भी कहूंगा कि क्या आप हमें, हमारी श्रोताओं को कुछ गुनगुना के कुछ बताएंगे, ताकि वो उस विस्थापन का दर्द है उसको और किसी और शब्दों में समझ पाए।
2: मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि जब भी कुछ लिखता हूं, जब भी कुछ सोचता हूं, तो वो सिर्फ कश्मीर पे ही आ जाता है। तो मेरी जो फिल्म शीश नंद्र है, उसमें एक दो गाने थे उसमें
0: जी,
2: एक संजीव रैना जी की भाभी ने भी गाया था, बहुत ही अच्छा सुंदर गाना था। एक मैंने खुद लिखा था, वो हमारे एक प्रोफेसर साहब ने लिखा था, डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी ने, एक मैंने खुद भी लिखा था, क्योंकि वो दर्द वहीं आ रहा था। तो ये गाना सुनाने से पहले मैं, जैसे पहले बताया था कि हम लोग ब्रांड कंज मीन्स जो हमारे वरंडा के होते थे, धोते थे। एक और चीज होती थी कि शाम को जरूर वहां पे
0: दिया जलाते, संध्या सोंग,
2: संध्या सोंग बोलते थे, उसका भी जिक्र मैंने यहाँ पे किया
0: जी।
2: और बाकी जैसे आपने बोला था शीश नंद्र मीन्स मीठी नींद, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे है, ये कश्मीरी में।
0: मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा कि वहां पर हमारी एक रीत थी, एक प्रथा थी कि शाम होते ही एक दिया जलाया जाता था, और ये माना जाता था कि जो हमारे घर देवता है उनको भी हम नमन करते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें। रमेश जी,

0: ये जो कुछ पलों की शांति थी, ये हमारे दिल की वेदना है, हम सब की वेदना है। इसमें हमारे जो पेरेंट्स है वो इस दुनिया से ये कहते कहते चले गए कि हम घर कब जा रहे हैं, मगर जो जन्मभूमि हमारी थी, मृत्यु के बाद वो शमशान उनको नहीं मिल पाया। हम आज भी प्रण करते हैं कि आज भी हमें आखिरी सांस जो हमारी है वो उसी जगह पर निकले जहां पर हमारा जन्म हुआ है। ये एक बड़ी कहानी की एक शुरुआत है। हम अगर इसको सही शब्द कहें तो ये एक दर्द की एक लंबी दास्तां है, मगर हमेशा ये कहा जाता है कि जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमें आगे की ओर देखना है। और अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने ये ना किया होता तो इस समय पूरे विश्व में, हर देश में कश्मीरी पंडित की प्रेजेंस नहीं होती। हम इस कार्यक्रम का समापन एक पॉजिटिव नोट से करना चाहेंगे। मैं अपने तीनों आमंत्रित मेहमानों से ये पूछना चाहूंगा, आखिर में वो हमारे सभी सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी,
1: बस देश प्रेम मन में रखना है हम सभी भारतीयों को, और अपने मातृभूमि और अपनी जन्मभूमि का प्यार आत्म मन मन मन रहे, और ये प्रे करके हम करना चाहते हैं कि कश्मीर हम इसी जन्म में जाके वहाँ रहें।
0: भारत जी,
2: मेरा ये मानना है कि जिंदगी के इस सफर में कुछ अच्छे लम्हे भी आते हैं, कुछ बुरे लम्हे भी आते हैं, लेकिन आदमी को हौसला नहीं खोना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक बतख की तरह पानी के नीचे पैडल करना चाहिए और ऊपर से एकदम सरलता से, बिल्कुल कुछ ना दिखाई दे जो मेहनत है, जो मेहनत अंदर से हो रही है, और ऊपर आप बड़े हंसते मुंह से इसको झेल के आगे चल के अपनी लाइफ को संवारेंगे, अपने समाज को सुधारेंगे और अपनी जितने भी कम्युनिटी हैं या जितने भी लोग हैं और ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छी तरह से आप आगे ले जा सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं और प्यार ले सकते हैं। जी
0: रमेश जी,
3: हम आपने सही कहा। सबसे पहली बात यह है कि ये दर्द तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दर्द, मगर हमने हमेशा ये कोशिश की है कि इस दर्द को अपनी ताकत बनाएं। तो यही वजह है कि जैसे आपने खुद बोला, किसी दर्द की वजह से जो हमने ताकत बनाई, उसी ताकत की वजह से आज सारे विश्व में कश्मीरी पंडित्स बहुत अच्छी तरह सेटल हुए हैं। और यही जो अभी महाराज ने भी बोला, लव ऑल सर्व ऑल, जो अगर आप कहीं पे भी देखोगे, मेरे मोबाइल पे भी देखोगे, ये मेरा मोटिव है, ये मेरी सिर्फ लिख के नहीं है, ये मैं दिल से भी करता हूं, लव ऑल सर्व ऑल। तो दैट्स द मेरी मैसेज है कि हमेशा सबसे प्यार कीजिए और सेवा वो हमेशा कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू। भारत सोपोरी जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
0: जी,
3: हमने तो बहुत कुछ दर्द सुनाया
0: जी,
3: आप खामोशी से सुनते रहे, कुछ तो बोलिए, जो ये दर्द कश्मीर का है उसको आप कैसे बयान करेंगे?
0: रोमेश जी, मैं हर दिन जब भी प्रसारण करता हूँ, मैं सभी श्रोताओं को ये कहता हूँ कि जो कश्मीर का दर्द है वो हमारी आवाज में आप तक हर दिन पहुँचता है, और हम अपने ही दर्द को आप तक नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अम्बाला मेरा दूसरा जन्म स्थान है, अम्बाला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं अम्बाला के हर एक व्यक्ति के तकलीफ को, हर एक व्यक्ति के दर्द को अपने शब्द देके सबके साथ साझा करता हूँ। जहां तक तो सवाल है कि मैं किस तरीके से अपने दर्द को पेश करता हूं, मेरी कोशिश है कि मैं आसपास के वातावरण को अपने साथ ग्रो करूं, उनको कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताऊं, जो हमारी टीम रेडियो वितस्ता है वो भी कश्मीरी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात है, या जो हमने वेद थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से हमने जो नाटकों का मंचन किया है उसमें भी हमने कश्मीरी फोक पर आधारित नाटक किए हैं। भाषा बेशक हिंदी रही है पर हमने लोगों को वहां भी अपने दर्द के साथ जोड़ा है और उनके दर्द को भी हमने समझा है। जहां तक एक और बात है, जब हमने इस संस्था को बनाना था तो नाम क्या रखना था, तो नाम हमने व्यथ थिएटर ग्रुप रखा, क्योंकि व्यथ हमेशा सदियों से चलती आ रही है। व्यथ को ही संस्कृत में वितस्ता कहते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। जिस तरीके से व्यथ की रवानी है, उस तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे सभी अंबाला वासियों और हमारे देश के वासियों की जिंदगी ऐसी ही रवा चलती रहे। दुख तकलीफें तो आती रही है, आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, पर उसी में से आप प्रभु का शुक्रिया करें, जो हमारे गुरुजी रमेश मराठा जी कहते हैं कि हमेशा शुक्रिया जिंदगी बोलना चाहिए। जिंदगी में जो भी कुछ हमारे पास है, उसी पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का करता हूँ समापन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: थैंक यू भारत जी, वंस अगेन जय हिंद।
1: थैंक यू भारत जी, जय हिंद।
2: भारत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें आमंत्रण किया इस अपने बहुत से खूबसूरत स्टूडियो में, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और काफी जहाँ से शुरुआत आपने की और जहाँ पहुँच गए हैं, हमें वाकई दिल में बहुत बहुत खुशी है। और आप आगे भी तरक्की करें और रेडियो वितस्ता बस ऐसे ही गूंजते रहे फिजाओं में और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे तक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पहुँचाएँ और बहुत अच्छी बातें पहुँचाएँ। और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप इस मकसद को लेकर आके चले हैं, उसमें आपकी जीत हो और आप आगे बढ़ें और सब खुश खुशहाल रहें, और बस यही कामना करता हूँ। और आपसे फिर मुलाकात होगी, जब आप फिर बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे।
0: थैंक यू भरत जी, जय हिंद।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान थे एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर श्री रोमेश पंडिता जी, एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर सिंगर श्री भारत पंडित जी और व्यवसायी श्री संजीव रैना जी। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान और निया जैन का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
5: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ढलते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीन दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज के कार्यक्रम भी पसंद आए होंगे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से, और ये सामुदायिक रेडियो अम्बाला छावनी से प्रसारण करने के बाद आप तक पहुंचाता है हर कोई बात, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के बारे में, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते हैं। उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम हर दिन नोट कराते हैं, आज भी नोट कराएंगे कुछ क्षणों के बाद। अगर आप अम्बाला में रहते हैं और अम्बाला वासियों का आप अपने अनुभव से मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप भी अपने बारे में हमें हमारे नंबर पर लिखिए, हम आपको आमंत्रण देंगे स्टूडियो में आपकी बात को रिकॉर्ड कर सभी अम्बाला वासियों तक पहुंचा सकें। हम बात करते हैं अम्बाला की, और हम चाहते हैं कि अम्बाला को विश्व पटल पर रखा जाए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:25। तो चलिए आज की यही भावभीनी बातचीत भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। उम्मीद है कि इन लम्हों ने आपके दिल को और अच्छा और सुहाना बनाया होगा और दिन को थोड़ा और सार्थक भी बनाया होगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो इंसान के जीवन से गहराई से जुड़ा है। हर दिन हम किसी खास विषय पर आपसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कुछ पंक्तियां। तो आज के लिए हमने विषय चुना है, हर बड़ी सफलता के पीछे एक खामोश संघर्ष की कहानी छिपी होती है। जीवन में जो कुछ भी अनमोल होता है वो बिना संघर्ष के कभी भी नहीं मिलता। चाहे किसी विद्यार्थी की मेहनत हो, किसी कामगार का परिश्रम हो, या किसी माँ बाप का अपने बच्चों के लिए किया गया त्याग, हर सफलता के पीछे एक लंबा और अनकहा संघर्ष छिपा होता है। हम अक्सर सिर्फ किसी की सफलता को देखते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन उसके पीछे बिताई गई नींद की रातें, बार बार मिली असफलताएं और हर हार न मानने का हौसला हमें नजर नहीं आता। संघर्ष कभी आसान नहीं होता, और यही वजह है कि बहुत से लोग बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर मुश्किल के बावजूद डटा रहता है, हर असफलता से कुछ नया सीखता है और गिरकर भी दोबारा उठ खड़ा होता है, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमें भीतर से मजबूत, परिपक्व और आत्मनिर्भर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हम मजबूत होते हैं। अक्सर सबसे बड़ी सीख सबसे कठिन समय में ही मिलती है। जो लोग अपने संघर्ष के दिनों को धैर्य और सकारात्मकता के साथ पार करते हैं, वो न सिर्फ अपने लक्ष्य को पाते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनकर उभरते हैं। इसलिए अपने संघर्ष से भागिए मत, बल्कि उससे अपनाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दोस्तों, याद रखिए, जिस तरह सोना आग में तपकर ही निखरता है, उसी तरह इंसान भी संघर्ष से गुजरकर ही अपनी असली क्षमता को पहचानता है। इसलिए अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि यही संघर्ष आपको कल की सफलता के लिए तैयार कर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यह था आज का विषय। उम्मीद करता हूं कि आप इस आज के विषय से कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। आपका फीडबैक हमारे तक अगर आप भेजेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हर दिन के लिए 4 पंक्तियां लाता हूं, आज भी 4 पंक्तियां आपके लिए लाया हूं, आपको समर्पित है। और आज की पंक्तियां यूं हैं,
अंधेरी रात के बाद ही होता है सूरज का उदय। अंधेरी रात के बाद ही होता है सूरज का उदय, मुश्किल घड़ी के बाद भी मिलता है सुख का समय। एक बार फिर पढ़ लेता हूं, बहुत ही प्रेरणादायक पंक्तियां हैं। अंधेरी रात के बाद ही होता है सूरज का उदय, मुश्किल घड़ी के बाद ही मिलता है सुख का समय। वितस्ता भी तो हर तूफान को सहकर आगे बढ़ती है, वितस्ता भी तो हर तूफान को सहकर आगे बढ़ती है, यही सिखाती है धैर्य से ही होती है हर जीत निश्चय। यही सिखाती है धैर्य से ही होती है हर जीत निश्चय। और हम प्रार्थना करते हैं कि सभी अंबालावासी ऐसे ही आगे बढ़े, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें, मेहनत करें और कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल हमारे लिए एक खास दिन है, 4 अक्टूबर 2026 रविवार। इस दिन हमारा सुपुत्र अखिलेश दास का जन्म हुआ था, तो कल हम उनका जन्म दिवस मनाएंगे और साथ में हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। शुरुआत करेंगे वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 सुनेंगे आप भक्ति संगीत और 7:05 पर हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत कार्यक्रम होगा आओ गांव चले एपिसोड 4 और साथ में होगा हमारी संस्कृति का एपिसोड 3। 8 आप सुनेंगे तुम्हें याद हो कि ना याद हो एपिसोड 13। कल का कार्यक्रम रोशन पर तैयार किया गया है, पेश करेंगे रमेश मराठा। 8:30 आप सैटरडे और संडे को सुनते हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। कल होगा एपिसोड 18 बेहतर संतुलन। 9:30 फिल्मी किस्से एपिसोड 1। कल के लिए हमने फिल्म चुनी है आन मिलो सजना। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे दीपक कश्यप और 10:05 पर कार्यक्रम एपिसोड 13 का होगा परिचर्चा का कार्यक्रम। हमारे साथ होंगी विशाल शर्मा डारले, उनसे होगी बातचीत, पेश करेंगे भारत सोपोरी और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 संगीत का कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, पेश करेंगे आरजे किरनी और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है प्यार की बातें। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे और हमारे साथ रहेंगे कल सुबह 6 से लेकर रात के 9 तक। आप अपना फीडबैक हमें भेजिए 7056413010 पर। नंबर आपको एक बार फिर बताते हैं 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो दोस्तों, बस आज यहीं तक। आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये बातचीत आपको अपनी मुश्किलों से लड़ने का नया हौसला दे गई होगी। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 से रात के 9 तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।